एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र एमएसी मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। दो दिन का यह सम्मेलन

0: हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के DTH चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: मति और सुमति मानव को परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ देन है। मति का सीधा और सरल अर्थ है बुद्धि। अनुचित आचार व्यवहार के व्यक्ति को लोक उसकी मति मारी गई है उक्ति से संबोधित करता है। मति को सुमति के रूप में काम लेना हम सबके अपने वश में है। जो सुमति के स्थान पर कुमति का सहारा लेते हैं उनका जड़मूल नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस ग्रंथ में विभीषण से भरी सभा में रावण को कहलाया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। साधारणतः

0: सुमति का सुमति या कुमति में बदलना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आवेश और क्रोध सबसे पहले विवेक को छोड़ता है और फिर वो कुमति के मार्ग को अपनाता है। इसीलिए सनातन धर्म की सांस्कृतिक मनीषा में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध को और सबसे बड़ा मित्र धृति अर्थात धैर्य को माना गया है। दुनिया को सन्मार्ग पर रखने वाले प्रत्येक महापुरुष का सद्गुण धैर्य ही रहा है। धैर्य के माध्यम मति सुमति में बदलती है तो सब प्रकार के सुख अर्थात संपत्ति प्राप्त होती है और कुमति तत्काल ही विपत्ति का कारण बनती है। हमारा विवेक हर पल मति को सुमति में बदलने का हेतु है, लेकिन स्वार्थ और अहंकार जनित क्रोध उसमें बाधक बनता है। जीवन में हर तरह की संपत्ति सुख का मूल सुमति ही है। इसके लिए मति का विवेक सम्मत प्रयोग पहली आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती निपात। प्रातः 6:50 पर समय होगा आदिवासी लोक संगीत का। कार्यक्रम वातायन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:20 पर।

महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी लोक का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:05 पर। कार्यक्रम हमारी मीडिया आप सुनेंगे शाम 6:15 पर। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा ठीक शाम 7:00।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब सुनवाते हैं किसान भाइयों और बहनों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती में बात हम सब किसान भाइयों ने बहनों ने सुना भी था कि हम बहनों राम राम राम राम। किसान भाई देखो हमारा हर घंटे मेहनत पड़े खेती बाड़ी में काम काज करवो पड़े तो किसान भाई देखो सुबह धड़ा सली रहता है आना दाड़ा में खास कर आपको स्वास्थ्य में देखभाल जरूर आप स्वास्थ्य सही है इसलिए अपना खेती बाड़ी में काम या कोई भी काम अपना

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती नी बात। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कटु भगत व साथी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: साधु बनो सेलरो।

0: उसमें रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर KG पंकज से कहानी। कहानी का शीर्षक है ममता।
1: ममत्व का प्रतीक है, मां से संबद्ध है। जितनी ममता नारी के हृदय में दी है उतनी पुरुष में नहीं होती। मां के बच्चे कैसे भी हों, सबको एक जैसा दुलार, प्यार व ममत्व देती है। उसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता है। ये एक ईश्वरी देन है। इसी ममता की भावना पर एक कहानी जन्म लेती है जो इस प्रकार है। राकेश व रंजना दोनों एक साथ कॉलेज में BA में पढ़ते थे। राकेश ब्राह्मण और रंजना जैन जाति की थी। दोनों ने BA पास कर लिया था। रंजना के पिता नहीं थे, केवल मां ने वह उसके बड़े भाई हरीश ने पाल पोस कर उच्च शिक्षा दिलवाई थी। लड़की सयानी हो गई थी। मां और रंजना के भाई ने जैन समाज में एक योग्य लड़का जो कंप्यूटर इंजीनियर था रंजना के लिए योग्य पात्र समझा और दोनों के विवाह का निश्चय किया। लेकिन शायद विधाता को यह स्वीकार नहीं था। राकेश और रंजना दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों वयस्क थे और अपना अच्छा बुरा खुद समझते थे। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे लेकिन समाज व जाति बीच में दीवार थी। एक दिन रंजना के भाई ने उससे कहा, अब हम तुम्हारी शादी अपने समाज के एक अच्छे लड़के जो कंप्यूटर इंजीनियर है उससे करना चाहते हैं। लड़का 2 दिन बाद बाहर से आ रहा है, तुम भी उसे देख लो, ऐसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। सुनकर रंजना सकते में आ गई और मुश्किल से कह सकी, मेरी जिंदगी का फैसला मैं ही करूंगी। जिसे मैं जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं, उसे मेरा जीवन साथी कैसे बना लूं? भाई बोला, हम तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं, लड़का तुम्हारे लिए हर तरह से योग्य है। रंजना बोली, नहीं भाई साहब, मैं किसी को प्यार करती हूं, हम एक साथ पढ़ते हैं और मैं उसी से शादी करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर भाई एकदम आग बबूला हो गया और उसने रंजना के गाल पर एक थप्पड़ मार दी। रंजना अपने कमरे में चली गई और बात आई गई होगी। उसी दिन रंजना राकेश से मिली और सब हालचाल बताए। दोनों के चेहरों पर चिंता झलक रही थी। रंजना ने कहा, आज ही कहीं चलकर शादी कर लेते हैं। राकेश बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। दोनों अपने कॉलेज के 2-3 दोस्तों के साथ आर्य समाज मंदिर गए। दोनों वयस्क थे, पढ़े लिखे थे और दोनों विवाह के लिए इच्छुक व सहमत थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई और 1 घंटे में विधिवत शादी करके विवाह बंधन में बंध गए। दूसरे दिन जब रंजना के घर वालों को पता चला कि रंजना ने किसी लड़के से शादी कर ली है, रंजना के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि राकेश ने रंजना का अपहरण कर भगा ले गया है। पुलिस ने इंक्वायरी की लेकिन लड़का लड़की वयस्क होने के और दोनों की सहमति से विवाह होना वह भी आर्य समाज मंदिर में, इसलिए कानून द्वारा मान्य था। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। रंजना के घर वालों ने रंजना से संबंध ही तोड़ लिया और इस अध्याय का समापन हो गया। रंजना और राकेश की नई जिंदगी का आरंभ हुआ और दोनों इस जीवन से संतुष्ट थे। रंजना और राकेश को एक कार्यालय में नौकरी मिल गई। दोनों बहुत खुश थे, जिंदगी की गाड़ी ठीक चल रही थी। 1.5 साल बाद रंजना ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। जिंदगी और खुशनुमा हो गई। बच्चे का नाम भवि रखा। जब भवि 1 वर्ष का हुआ तो रंजना ने कहा, राकेश कल भवि की पहली वर्षगांठ है, धूमधाम से मनानी चाहिए, कहीं किसी अच्छे होटल में मनाया जाए। लेकिन राकेश इसके पक्ष में नहीं था। उसने रंजना को समझाया और कहा कि जन्म दिवस अपने घर पर ही मनाएंगे। रंजना राजी हो गई। जब घर पर ही अपने लोन में सब व्यवस्था कर ली गई थी तब अचानक रंजना की मां भाई भाभी अपनी चमचमाती कार में बहुत सारा सामान लेकर नौकरों के

0: उस पार्टी में पहुंच गए और आते ही रंजना से कहा, आज मेरे भाणेज की प्रथम वर्षगांठ है और इस साधारण तरीके से मना रहे हो। भाई ने जो छोटी सी केक टेबल पर सजा रखी थी उसे हटाने के लिए नौकरों से कहा और जो बड़ी केक वो अपने साथ लाए थे उसे रखने के लिए बोला। जब नौकर छोटी केक को हटाने जा रहे थे तो राकेश ने टोका, खबरदार इस केक को हाथ में लगाना। इस पर रंजना का भाई सामने आया और बड़े गुस्से में उल्टी सीधी बातें करने लगा। दोनों में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो गई और पूरा माहौल बिगड़ गया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। रंजना के भाई ने केक वाली टेबल ही उलट दी। तब राकेश ने गुस्से में रंजना के भाई को एक चपत लगा दी। माहौल और बिगड़ गया। अंत में भाई भाभी व मां उस महफिल को छोड़कर जाने ही वाले थे कि रंजना ने राकेश को कहा कि वह तुमने अच्छा नहीं किया कि तुमने मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। राकेश बोला, अगर तुम अपने भाई का साथ देना चाहती हो तो बेशक तुम भी चली जाओ। इधर भाई तैयार था ही, उसने फौरन बहन को अपने साथ चलने को कहा। रंजना ने अपना बच्चा साथ लेना चाहा तो राकेश ने रंजना को भी धक्का दे दिया। तब रंजना के भाई ने उसको संभाल कर अपने साथ कार में बिठा लिया और कहा, अभी बच्चे को छोड़ो, कोर्ट के द्वारा हम इसे हासिल कर लेंगे। समय का चक्र चलता रहा। भवी 4 वर्ष का हो गया। राकेश ने उसे नवजीवन स्कूल में भर्ती करा दिया और साथ ही उसे स्कूल से संबद्ध नवजीवन हॉस्टल में भी रख दिया। रोज शाम को राकेश जाकर उससे मिलाता। जब रंजना को पता लगा कि भवी स्कूल जाने लगा है और उसे नवजीवन हॉस्टल में रख करा लिया है तो वह भी उसे देखने वहां जाने लगी। भवी को कहा कि बेटे, मैं तेरी मां हूं जिसे तुम्हारे पापा ने घर से बाहर निकाल दिया है। मैं रोज आऊंगी, तुम मेरे अच्छे बेटे हो, मुझसे अलग मत होना। भवी बोला, मामा तुम पापा के साथ क्यों नहीं रहती हो? मैं दोनों को चाहता हूं। रंजना बोली, वो मुझे नहीं चाहते। भवी दुखी हो जाता है, लेकिन विधाता को क्या स्वीकार था, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक बच्चा 5 वर्ष का न हो जाए वह अपने बाप के संरक्षण में रहेगा, उसके बाद बच्चा जिसके पास रहना चाहे रह सकता है। एक दिन भवी बीमार हो गया, उसको पीलिया जॉन्डिस हो गया, हालत बहुत नाजुक हो गई। राकेश ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, दिन रात उसकी देखभाल करता रहा, हालत बिगड़ती गई। इस बीच रंजना के घर वालों के दबाव से रंजना को पुनर्विवाह के लिए तैयार किया और दूसरे दिन सगाई की रस्म पूरी कर दी। ठीक 15 दिन बाद विवाह होना था। जब रंजना हॉस्टल गई तो पता लगा कि भवी बीमार है और उसे जेबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। उससे रहा नहीं गया, वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची और पूछताछ विभाग से पता लगा कि भवी आईसीयू में भर्ती है। जब वो वहां गई तो वहां राकेश भवी के पास बैठा रो रहा था। रंजना राकेश के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ भवी को? राकेश ने कहा, इसे सीवियर जॉन्डिस हुआ है, बचने की कोई आशा नहीं, डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं। रंजना बुरी तरह रो रही थी। उसने भवी के सिर पर हाथ फेरा, सीने से लगाया और बोली, मेरे बेटे भवी आंखें खोल, तुम्हारी मम्मा आई है, उठ जा बेटे। बेटा बेहोशी के आलम में था। उसके सीने पर सिर रखकर रंजना बिलख बिलख कर रोती रही। अचानक भवी के शरीर में हरकत हुई, धीरे से आंखें खोली और बोला, मम्मा मैं जा रहा हूं, आप और पापा लड़ते रहो, मुझे तो दोनों चाहिए, अगर आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो मैं कहां रहूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। रंजना बोली, नहीं बेटे ऐसा मत कहो, हम साथ रहेंगे, तुम भी हमारे साथ रहोगे। यह ममता का प्रभाव था या ईश्वर का विधान कि भवी एकदम मां के गले लग गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर के डॉक्टर दौड़कर आए और बच्चे को देखने लगे और बोले, चमत्कार, ईश्वर का चमत्कार कही है कि आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है, कल तक शायद छुट्टी ले सके। यह एक मां की ममता की पुकार थी जिसने उस बच्चे को बचा लिया।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे डॉक्टर केजी पंकज से कहानी ममता। इसी के साथ कार्यक्रम वातायन यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: Pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot p

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे गोमती के किनारे इस फिल्म से गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे 9-2-11 इस फिल्म से गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने, पर इस अंतराल के बाद।

हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का अगला गाना डिटेक्टिव फिल्म से मोहम्मद रफी और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, मुकुल रॉय का संगीत।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अब क्या होगा। इस फिल्म से ये गाना सावन कुमार के बोल उषा खन्ना का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे दूसरा आदमी। इस फिल्म से एक गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए।

0: चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
2: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
1: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अख्वापदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।

0: दी।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रूपये के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रूपये किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोलंबो में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ देसी। मैं हूं हीना जैन, आपकी दोस्त रेडियो होस्ट। स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखें वो कह देती हैं जो शब्द कभी नहीं कह पाते। आंखें सिर्फ हमारे शरीर का एक अंग नहीं है, इन आंखों से हम अपनों के चेहरे देखते हैं, प्रकृति के रंग देखते हैं, सुबह का सूरज देखते हैं, बारिश की बूंदें देखते हैं और अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान की आंखों के सामने अंधेरा हो, उसके लिए दुनिया कैसी होगी? और अगर हमारे जाने के बाद हमारी आंखें किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में रोशनी ला सके, तो इससे खूबसूरत विदाई शायद कोई नहीं हो सकती। इसी भावना के साथ आज हम बात करेंगे आंखों की, दृष्टि के महत्व की और नेत्रदान जैसे महान संकल्प की। तो आइए आज दिल की बातें करेंगे कार्यक्रम कुछ देसी में। सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जो रोशनी, उम्मीद और जीवन की खूबसूरती का एहसास कराता है। तो आइए आंखों की शरारतों का ये गीत हम सभी सुनते हैं।

दोस्तों, हम रोज आंखें खोलते हैं और दुनिया को देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम सोचते हैं कि देख पाना कितना बड़ा वरदान है। एक माँ अपने बच्चे की पहली मुस्कान देखती है, एक पिता अपने बच्चे को पहली बार स्कूल जाते देखता है, एक बच्चा आसमान में उड़ते हुए पतंग को देखता है, एक कलाकार रंगों को कैनवास पर उतरते हुए देखता है। इन सबके पीछे हमारी आंखों की रोशनी है, इसलिए अपनी आंखों की कद्र कीजिए और उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनके लिए दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य सिर्फ

कल्पना है। आंखों में सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, इनमें सपनों की तकदीर होती है। रोशनी की कीमत उससे पूछिए जिनकी दुनिया अंधेरे में होती है। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा वरदान हमें दिया है, जिनके पास आंखें हैं उन सभी को इस बात की कद्र करनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि कितने बड़े तोहफे से हम सभी नवाजे गए हैं। आइए दोस्तों, इसी बात के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आंखें हमारे दिल का आईना भी होती है। कभी खुशी में चमकती है, कभी दुख में नम हो जाती है, कभी किसी अपने को देखकर बिना कुछ कहे मुस्कुरा देती है। कभी आंखों में सपने होते हैं तो कभी उम्मीद, और कभी कभी आंखों में इतना कुछ छिपा होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं।

शायद इसलिए किसी की आंखों में देखकर उसका दर्द समझ लेने वाला इंसान बहुत खास होता है। आंखों में कितनी बातें कही, होंठ मगर खामोश रहे, आंसू बनकर दर्द बहे और सपने बनकर ख्वाब रहे। इसलिए किसी की आंखों में आंसू दिखे तो सिर्फ देखिए मत, उसका हाथ थामिए और उसकी आंखों की बातों को समझिए। ये बात साबित कर देगी कि वो इंसान आपका बहुत अपना है और आप उस इंसान के लिए बहुत खास हो। आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, नेत्रदान एक ऐसा संकल्प है जिसमें इंसान अपने जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी छोड़ जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने वर्षों से दुनिया नहीं देखी, अगर किसी दाता के कारण अपने प्रियजन का चेहरा देख पाए, अपने घर की दीवार देख पाए, आसमान देख पाए, तो उस खुशी की कल्पना कीजिए। नेत्रदान का अर्थ है अपने जीवन के बाद भी किसी और के जीवन में उम्मीद का उजाला छोड़ जाना। ये सिर्फ दान नहीं, मानवता की एक खूबसूरत मिसाल है। जीते जी तो हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन जाने के बाद भी किसी के काम आ जाना, यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। और यह पहचान मिलती है नेत्रदान से। इसलिए आप सभी से उम्मीद है और आप सभी से दरख्वास्त है कि आप सभी नेत्रदान का संकल्प जरूर करें। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए क्या है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास समय है, तो किसी के पास ज्ञान। लेकिन इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप ये है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ें। नेत्रदान भी इसी भावना का हिस्सा है। एक छोटा सा संकल्प किसी दूसरे इंसान के लिए पूरी दुनिया बदल सकता है। याद रखिए, रोशनी को जितना बांटेंगे उतनी ही ज्यादा रोशनी पैदा होगी। एक दीप से दूसरा दीप जलता चला जाए, अंधेरा धीरे धीरे मिटता चला जाए। हम तो चले जाएंगे एक दिन इस दुनिया से, मगर किसी आंखों में उजाला रह जाए। इसी भावना के साथ आज हम सब संकल्प लेते हैं नेत्रदान का।

तो दोस्तों, आज जब आप घर जाएं और आईने में अपनी आंखों को देखें तो सिर्फ अपनी खूबसूरती मत देखिए, इन आंखों की कीमत भी समझिए, क्योंकि आंखें हमें दुनिया दिखाती हैं, लेकिन नेत्रदान किसी को दुनिया देखने का अवसर दे सकता है। आइए अपने जीवन में रोशनी रखिए और जहां तक संभव हो सके दूसरों के जीवन में भी रोशनी बांटिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी दोस्त हीना जैन को और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मांड गायिका अलहज़ लाहिबाई की आवाज में गाये कुछ राजस्थानी मांड गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने बांडी, जोजरी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तीनों के किनारे 500 मीटर में उद्योगों पर रोक लगाई। यमुना जल परियोजना की डीपीआर के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के 5 जिलों में आज से उर्वरक बिक्री की डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। और राज्य में मॉनसून फिर से सक्रिय, आज पूर्वी राजस्थान में कई जगह हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना है।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की बांडी, जोजरी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं बाढ़ रेखा या नदी के प्रवाह क्षेत्र के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। ये व्यवस्था उच्च बाढ़ रेखा और पारिस्थितिकी बफर जोन के वैज्ञानिक सीमांकन तक लागू रहेगी। आदेश का अजमेर जिले पर भी असर पड़ेगा क्योंकि लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को नदी तंत्र के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए समन्वित कार्य योजना पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में कल 9वीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। परियोजना की DPR के लिए आवश्यक हाइड्रोलॉजी और अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 21 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग में परियोजना की DPR की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने DPR के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों से भाई बहन के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक में कहा कि पौधरोपण करने वाले भाई बहनों को सम्मानित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने

0: अभियान की समीक्षा करते हुए इस साल 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक 7 करोड़ 58 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय से पौधरोपण करने और लगाए गए पौधों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आमजन को त्योहारों के अवसर पर पौधरोपण के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश के 5 जिलों में आज से उर्वरक बिक्री की डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू में लागू होने वाली इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना और कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर अंकुश लगाना है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। इसके तहत किसान उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे और उन्हें 48 घंटे के लिए वैध टोकन जारी किया जाएगा। टोकन के आधार पर किसान नजदीकी अधिकृत विक्रेता से उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। विभाग के अनुसार डिजिटल निगरानी से उर्वरक की मांग, उपलब्धता और वितरण पर नजर रखी जाएगी और वास्तविक जरूरत वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। नई दिल्ली में होने वाले भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 के लिए पहला क्षेत्रीय रोड शो जयपुर में आयोजित किया गया। ये शो आयोजन से पहले निवेश को गति देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा भागीदारों को एक साथ लाने का सरकार का प्रयास है। इसमें सरकार, उद्योग और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन संबोधन में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए राज्य की रणनीतिक रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान परंपरागत सौर प्रणाली से आगे बढ़कर नए और उभरते हरित ईंधन के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 31 जुलाई तक 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है। एनर्जी समिट 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। चूरू में पुलिस ने 26 बड़े अपराधियों की करीब 3,61,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति के खिलाफ जब्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में 26 इस्तगासे न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। सालासर थाना क्षेत्र में अपराधियों की जमीन नीलाम कर उसकी राशि राजकोष में जमा कराई गई है। वहीं राजगुड़ में गैंगस्टर के भवन और चूरू में पेपर लीक मामले के आरोपी की कथित अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा।
1: इस बार सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा ही दर्ज करना ही हमारा मेन मकसद नहीं है। उनकी जो आर्थिक बैकबोन है, उन्होंने जो भी इस अपराध के क्षेत्र से उन्होंने जो भी कमाई की है, अर्जित किया गया, उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन कर रहे हैं। हमारे तरफ से 107 बीएनएसएस जो है उसके तहत हमने ऑलरेडी एक मुकदमे में सफलतापूर्वक गाड़ी पर जब्त करके नीलामी करके राजकोष में जमा भी करवाया गया है। उसी के साथ साथ और एक प्रकरण में भी हमने एक बदमाश का गाड़ी को जब्त करके नीलामी करने का भी अभी प्रोसेस में है। तो वैसे ही हमने लगभग 26 के आसपास चिन्हित किया गया। उसके अलावा भी बहुत सारे अन्य चिन्हित किया गया, तो उनको भी जल्द से जल्द इसके तहत इनकी जो संपत्ति है उनको जब्त करके उनके आर्थिक नुकसान करने के प्रयास में है।
0: प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित करीब एक दर्जन शहरों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हुई। डीग के सीकरी में 102 मिलीमीटर, जोरहरा में 67, नगर में 64 और कामा में 60 मिलीमीटर बारिश हुई। अलवर के मालाखेड़ा में 79, गोविंदगढ़ में 77 और खैरथर तिजारा के हरसोली में 87 तथा किशनगढ़ बांस में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक और डूंगरपुर में भी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी

0: राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।
1: पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग, वहीं कोटा और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना अगले दो तीन दिन बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा इनसे लगने वाले जो अजमेर संभाग के जिले हैं, वहीं उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। यानी पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले दो तीन दिन बारिश की गतिविधियां जारी होंगी, कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने बांडी, जोजरी और लूणी नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तीनों के किनारे 500 मीटर में उद्योगों पर रोक लगाई। यमुना जल परियोजना की डीपीआर के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय स्वीकृतियां जारी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के 5 जिलों में आज से उर्वरक बिक्री की डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। और राज्य में मॉनसून फिर से सक्रिय, आज पूर्वी राजस्थान में कई जगह हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र

0: में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
0: जी।
1: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं
0: जी।
1: आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
0: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
0: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है। यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
0: जी।
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
0: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी जी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोट, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं
0: जी।
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं
0: जी।
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे
0: जी।
1: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी के

0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम।
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
5: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला

0: मामला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं। और फिर

0: उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी, शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं।

0: हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
1: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
2: जी, हम
1: सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत

0: और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
1: हाँ हाँ, हम तैयार हैं, ठीक है।
0: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
2: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
3: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
0: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
4: वो कैसे?
5: क्या गड्ढा बनाना है?
6: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
4: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
0: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
6: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
0: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक,
0: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
5: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
1: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
8: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सदा प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता यह है कि मैं प्रोफेसर हूं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूं, पब्लिकेशन करती हूं, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है
1: क्या
2: ये माध्यम से।
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
2: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
1: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
2: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20 से 22 हजार है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1 लाख के ऊपर है तो इस पर से आप समझ
1: ज्यादा है।
2: यस
1: जी जी।
2: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को। तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरिया अटैक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है।

0: इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
1: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं, पर थोड़ा संभाल के,
0: बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा
1: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
0: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
1: जी,
0: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
1: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
0: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
1: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
0: बिल्कुल
1: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
0: आप कर दीजिए
1: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं। इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग. आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है. मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है. और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है. और जब बाल में टक्कल, बालनेस दिखाई देता है, तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है.
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता
1: तो
0: है.
1: बालनेस कभी दिखाई देता है. 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है.
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई.
1: बिल्कुल. और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं. तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है.
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया. मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूं तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है. लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है. मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके, तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए.
0: बिल्कुल.
1: बिल्कुल.
0: और गणित की परीक्षा मत लीजिए
1: हाँ, तीन महीने के कितने हो गए? तो
0: मेरी. जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए.
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40-50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए. आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं.
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं. और
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे. कुछ दिन तक आ रहे हैं, महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है.
0: ठीक
1: इसको
0: बात.
1: नॉर्मल नहीं कहा जाता है.
0: जी
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है. ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
0: ये जो
1: जिसको
0: आपने
1: हम,
0: टर्म यूज की
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है.
0: ब्लू कलर की रोशनी में.
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें. तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं. उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है.

0: दैट
1: जी
0: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
1: बिल्कुल।
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है। तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
1: जी बिल्कुल,
0: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन।
1: ये समझने की बात है,
0: ये समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है। और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के?
0: नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट,
1: ओके,
0: एक डिग्री नहीं है।
1: जी जी
0: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं,
1: ओके।
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर। यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग,
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में पीसीओडी नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी पीसीओडी हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे
0: बढ़िया
1: तो बात, हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है, तो पीसीओडी और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है। और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होके उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती

0: है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा,
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं।
0: 40 साल के, 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया
1: जी ये
0: कि
1: बहुत आज के जमाने की चीज है।
0: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई
0: यस
1: अगर खान पान ठीक नहीं किया तो
0: नहीं,
1: इसका
0: सभी
1: असर।
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती
1: हैं। दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारा एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के।
0: ओके,
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है, आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते बिकॉज इट्स नॉट

0: एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोला, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
1: ओके
0: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है, पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है जब, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
1: इस उम्र में तो सबका होता है, हमारा भी हुआ था।
0: बिल्कुल, यही डायलॉग होता है।
1: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं लेना।
0: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना, आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
1: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल,
0: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30-40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी रीठा शिकाकाई चाय पत्ती जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना?
0: मेहंदी रीठा शिकाकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, पैस का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
1: उल्टा हो जाएगा।
0: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बोतल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझमें बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी ही चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
1: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
0: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
1: जी,
0: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
1: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी।
0: Yes.
1: मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से पान

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे
1: हैं। तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी को नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपकी वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओहो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ है?
1: इन मंथ।
0: ओहो हो,
1: इन अ मंथ।
0: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए। तो
0: नहीं नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है, वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
0: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत। और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी।
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का

0: नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं, जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए
1: और यहाँ तो उल्टा का खाना रात को हो रहा है।
0: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है लाइनिंग वो खराब होने चालू हो जाती है।
1: यस यस बिल्कुल।
0: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है इसके साथ, जब ये रिसर्च किया हुआ है इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
1: बिल्कुल।
0: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है, 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका,
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी।
1: या
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल

0: जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है, ना इवन पैसिव स्मोकिंग। कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, आप ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
0: तो ये समझने की जरूरत है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: यस,
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धुरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम अली की कुछ गजलें। आइए श्रोताओं, सुनते हैं पहली गजल।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा

रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः की 11:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अभिमान से। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एसटी परमन का संगीत निर्देशन।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे।

फिल्मी संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल और आरटी बर्मन का संगीत निर्देशन। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरटी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की

0: आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आयलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चांद का टुकड़ा इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। महेश और किशोर ने इसे संगीत से सजाया है।

0: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सावन कुमार टाक ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं येसुदास और अनुराधा पौड़वाल के आवाजों में साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत। इंदिवर की रचना उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: बेवफा से वफा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: जय एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है, आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम अब क्या होगा।

इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी हां साथियों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम एक पहेली लेकर आते हैं इबारत के रूप में। आपको बुझानी होती है पहेलियां और बताने होते हैं वो शब्द जिनसे आज गीत बजने वाले हैं। तो चलिए जान ले एक बार कि कौन सी है वो पहेली और फिर आप बताएंगे वो शब्द। ध्यान से सुनिएगा। बात एक रात की थी, आसमान में चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति अपने साजन का इंतजार कर रही थी। हवा चली तो दिलबर की याद आई, याद आई तो नैना भर आए। तभी दूर से किसी के आने की

आहट महसूस हुई। दिल ने कहा, वो आ गया। पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इस पहेली को लेकर आप सभी ने कई सारी बातें लिखी हैं और उन कमेंट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक बात हम आपको आज की इबारत को लेकर बता देते हैं। तो वो बात ये है कि अक्सर हम जब पहेली बताते हैं, कोई पहेली सुनाते हैं या इबारत पढ़ते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं उनसे कोई भी गीत हो सकता है, मगर आज के जो गीत हैं उनसे कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना आज के कार्यक्रम में आपको क्या करना है। तो यूं तो अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताती हूं, जैसे ज्योति शब्द से हो सकता है आप समझे ज्योतिष कलश छल के ये गीत बजेगा, और फूल से शायद आप समझें कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गीत बजेगा। मगर नहीं, आज जो गीत बजेंगे वो कहानी के रूप में होंगे, यानी कि वो गीत न सिर्फ शब्दों से जुड़ते हैं बल्कि पूरी पहेली की कहानी से जुड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। पहचानिए वो शब्द।

इस गीत में जो शब्द था, जी हाँ, वो यही शब्द था चांद। और शायद आप समझ गए होंगे कि चांद शब्द से और भी गीत हो सकते थे, मगर चूंकि इनमें नींद ना आने की बात हो रही है तो ये हमारी कहानी से जुड़ता है, जो कहानी हमने पहेली में बताई है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हो तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथ ही लिखते हैं, आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है, बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है। जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के

0: बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें इस गीत को लिखा अंजान और प्रकाश मेहरा ने।
1: रात प्यार की,
0: रात एक साथी ने लिखा है आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नैन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है और ऐसे में हाथों में फूल चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो वियोग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
0: अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है। तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं दो बदन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए, तो इसमें याद शब्द था। और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप

0: टैलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर। इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द जुड़ता है।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो, मगर उदाहरण

लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहां वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं, और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है, परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे है उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में।

0: फिल्म का नाम कभी कभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।
1: तेरे चेहरे

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा आगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो ये कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: जय एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेलुलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यू

0: सीपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 230,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता

0: लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

0: आपने सुना चश्मे व दूर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेलुलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको

सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नाम है सारी बंबई में मशहूर। हाँ बेटा समझे, दादर वरली चर्च गेट पोरी बंदर कंबूर। देखो मेरा नाम है सारी बंबई में मशहूर। जाने राज कपूर मुझे और जाने मीना कुमारी की टोपी और चश्मा और

के ढोल बंदर मेरा करता है कि देखो रॉक एंड रोल। नए जमाने की इसको भी लगी ये बीमारी, सदके

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: क्या हालचाल?
1: बिल्कुल ठीक।
0: मजे में है?
1: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
0: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
1: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
0: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
1: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
0: नेकी और पूछ।
1: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सोनाली।
0: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
1: बिल्कुल।
0: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
1: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
0: घर में का कोई एक सदस्य कह देता है अरे रुको रुको फेंको मत, इतना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
1: इन्हें तो हम खास तौर पर संभाल के रखते हैं।
0: हाँ, अरे नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमको कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो

0: हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
0: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो कि सह संस्थापक है एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
0: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
1: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना
0: कि मजेदार।
1: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसे, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर कुछ हो जाते हैं।
0: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सबने खाते तो भी एक किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया इस सब्जी लाने के लिए।
1: बिल्कुल। फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सही से रख भी नहीं सकते,
0: फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
1: बिल्कुल। तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सके।
0: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटी के अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों को पढ़ के।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
0: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या,
1: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी। तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
0: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है छोटी? हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी।
0: बिल्कुल, जिन्होंने प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए

0: परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हिमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
1: बिल्कुल, उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना।
0: और खास बात तो ये थी कि हिमलता का शुरुआती अनुभव यह था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: बिल्कुल, अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
0: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीए ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी में लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
1: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
0: और अब लेते हैं एक ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीददारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देखकर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तैसा करके फ्री में नहीं लाता।
1: बहुत अच्छी बात, सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज, वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती है। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं, अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है।
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई लाकर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है, अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कही। और एक और मैं श्रीतंज लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं, उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, पर साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है। प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही

0: पास हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही,
0: नहीं नहीं नहीं आप पढ़िए।
1: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है, तो कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अभी सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं, मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं। यानी देखिए दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोकझोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
1: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नापतोल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं ताकि सब्जी और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं।
0: अच्छा, और साथ ही एक और श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है, ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता, लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं, वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
1: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठाया है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं। पर अब हमें गीत सुनना है।
0: बिल्कुल, गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किनकी बात लेने जा रही हो?
1: हाँ, आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से कि कभी लेने जाते ही नहीं सब्जी। और एक और श्रोताएं जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरी इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दो संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर के और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं, ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना?
1: बिल्कुल,
0: डाइट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते हैं कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा, बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना

0: जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरे उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
1: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी
0: सुनना है।

0: ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है।
1: और एक और शीतल जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ पूरा
0: कॉकरोच हो जाएंगे,
1: कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
0: जी, एक साथ ही लिखते हैं घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाले कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
1: वाह, इन्होंने गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने के बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहां पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
1: गीत सुनना है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है। तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है। ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं,
1: ये ना बहुत इससे जुड़ी भावनाएं भी होती है ना, तो रखना भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की
1: खासकर प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी के जो पेपर हैं, उसके बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप, बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं। लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल दीजिए,
1: यानी दिवाली तक इंतजार मत कीजिए। हर दो महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा,
0: घर भी साफ रहता है थोड़ा। जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना वहाँ पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भाई सामान बढ़ा लिया तो उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे रहने
0: में लगे रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सब बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना है।
0: बिल्कुल, घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो उसे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति

0: व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है।
1: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया,
0: समझाया
1: किया। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे तरह से बताया तो वही बताने उस बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने थे, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए।
0: बिल्कुल सही,
1: दुखों को नहीं, दुखों को ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
0: हाँ, तो आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी आप लोगों के बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो उसके बाद अगर मकान मालिक किराया लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है, कहते हैं कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुत आयत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता है।
0: बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और
1: बल्कि मरहम का काम करें अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

पलकों में सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया, जुल्फ की

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के, और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप
0: और विविध भारती सुनते रहिए। और हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
3: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
3: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
3: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
3: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
3: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
3: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की।
3: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
3: हाँ, ऐसे ही हमारा वही
1: खेल वाले
3: हम भी खेलते थे वो। हाँ। सारी चीजें गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और उस
1: मिट्टी में
3: वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो संगीत कुर्सी ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय?
3: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एकाध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
3: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
3: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो ओनर सीधे सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और

0: बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत
0: सिखाई जाती थी।
2: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
0: मेरे
1: कौन से गांव की बात है ये?
0: ये गांव के पास एक गांव है कासोदा, गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
0: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती था, तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
0: जी। आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: और वो अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है कैरेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगाजल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और पीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: आपकी कैसी
1: हमारी भूमिका?

0: का हमें भी नहीं पता अभी तक, तो देखने के बाद ही पता लगेगा क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है। मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी जैसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया।
1: हाँ हाँ।
0: बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये करना, ये मूव करना, ये बोलना, हमने बोल दिया, बस खत्म।
1: अच्छा।
0: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है। और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला। काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम 3 है मान लो, वेलकम टू द जंगल।
1: जी, अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने एक खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर।
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
1: क्या बात है, प्रतिभा की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं, आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस के,
0: ये आपने सारी पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका का हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
0: सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी, लेकिन हाँ अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी, और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो रामगोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज्यादा किस्से नहीं है, अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जाकर के वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, वैसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम ए वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे मैं कहा कहाँ बुलाया उन्होंने, एक 5-स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे, तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है।
0: तो मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
0: तुमको कहा था तुझे नहीं लूटूंगी, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है।

0: कसम वो इरादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका?
2: इन्होंने मेरा बहुत बात दिल तोड़ा है।
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
2: हाँ, छह छह महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी। बहुत
3: ये बोल रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई।
4: अरे लेकिन गाना कमाल है।
1: नहीं अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
2: अब वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये नापसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके पसंद
1: तो शादी के पहले होता है, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती है हर पति।
2: नहीं नहीं, वो लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती उनके बारे में।
3: अब हम क्या उससे ऊपर उठ चुके हैं जी। पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया।
1: अच्छा,
3: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
3: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा,
3: कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों को।
2: गई बात,
3: हाँ गई बात गई, क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के।
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
2: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे

0: कोई चीज रखने की इधर उधर
1: नहीं नहीं ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
0: अच्छा
1: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
0: अच्छा क्या बात है,
1: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना। ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
0: सच बोल रहे हैं प्रतिभा जी? चलो मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
1: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
0: नहीं नहीं आपको अपने से बताना है।
2: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
1: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
0: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं, इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगते थे ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
0: क्या बात,
2: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
0: क्या बात,
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं, रेडियो है कि नहीं, रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ,
0: श्रोता सुन रहे हैं।
2: तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है, कोका कोला कलर का।
0: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
0: आप गांठ रख लेती हैं मन में।
1: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
0: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी।
2: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा। वो हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
0: देखिए यहाँ
2: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
0: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना?
2: अब तक 56 माय फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल
0: जी, जी जी,
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
0: जी,
2: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
1: इसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
2: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था, नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी, पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
0: जी,
2: 5 साल लगे बनाने में।
0: क्या बात है,
2: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
0: जी। आपने डायरेक्ट भी की है?
2: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
0: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
1: मुझसे आया था
0: जी,
2: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट नाना पाटेकर की, उसमें कहानी थी एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है।

0: और वो अपने बच्चों
1: वो
0: को सब
1: फेमस
0: दे
1: प्ले
0: है
1: मराठी का ना दिसंबर।
0: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था। फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर है जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनकी कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी। तो फिर हमने उस पर फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत है। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
1: जी,
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
1: जी,
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा,
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।

0: सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार उसको पता चलती है तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और मेरी वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये। तो बड़ा अच्छा लगा, मजेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो वहाँ गए थे शूट करने, अच्छा रहा।
1: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं?
0: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है और हम हर साल करते हैं। पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी। तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है। तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं। तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सिलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास। फिर वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं। फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है। तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, दिखते हैं।
1: जी जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पर साझा करेंगे आप?
0: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
1: जी जी जी जी,
0: हाँ उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया अच्छा रोल था छोटा सा। वो एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
1: जी,
0: रोल था मेरा
1: बिल्कुल।
0: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो। तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं और बड़ा अच्छा वो करते हैं। तो इसलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं। तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने और ओपनिंग फिल्म और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़।
0: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
1: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आंखा एक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है।
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं।

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वहां की पुलिस शहर की सब

0: करते हैं। शुरू किया हमने और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे
1: जी, जी।
0: या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में
1: जी।
0: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वे से भी फिल्में आ रही थी और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली
1: जी जी,
0: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
2: लॉकडाउन था
1: जी,
0: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था। पहले दो साल हमने ऑनलाइन किया तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पांस ऑनलाइन में भी रहा,
1: और अब वेदा कुनुमा में
0: ऑफकोर्स अब तो फिजिकली करते हैं
1: तो बहुत बढ़िया है, और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल हो सकते हैं,
0: होना ही चाहिए।
1: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
0: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है,
1: अच्छा वो प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
0: नहीं नहीं कभी नहीं मिला, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तुम मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
1: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
0: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
1: जी,
0: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो, नो एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
1: अच्छा क्या बात है।
0: हाँ तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
1: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी सी बातें और करते हैं
0: जी।
1: एक गाना बताइए कौन सा सुनवाए।
0: कुहू कुहू बोले कोयल।

0: नहीं थी। तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा कुछ फिल्में के नाम है और अब तक 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इसकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है। और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि अरे ये एक्टिंग?
1: हाँ, मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान प्रदान?
1: हाँ, मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का।
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देते, सिखा देते ना कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब। मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे। इसके दोस्त लोग आते थे, कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी। फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे। इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दे। हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलते थे, मजा शेमड़ा, मजा गाढ़ो, मजा पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा, शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए, अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ो, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो, समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
1: मैं तो सब समझती हूँ।
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, मेरे नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ही प्यार से बस। बाकी मुझे कुछ क्या बोलते, नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली। कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पर लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए। अब मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसीलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में, हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया, अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है। तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना मैंने मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल।
0: कभी
2: कुछ होता नहीं,
0: क्या आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती?
1: नहीं नहीं, इतने भी शरीफ नहीं है।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए, आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है। तो
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल।

0: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
1: कहाँ दो दिलाने के मिलते

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गांव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा जब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैं क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रिपेटरी में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है।
1: और हमारा ही खाना हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा अच्छा। खा जाते थे।
0: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है।
0: बना के खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल, कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा,
2: खिलाते हैं
0: जी जी। तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की, आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
1: नहीं नहीं, बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए, मेरी मदर स्वेटर बुनती थी।

0: थी, सिलाई करती थी कपड़े। और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रूपये इकट्ठे किए और साइकिल,
1: अरे वाह क्या बात है,
0: आनी थी उस दिन। और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाएं, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि एक टैक्सी वाले से बात की थी तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू, एक चीज पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
0: हम तो
1: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था,
0: हम तो 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपए भी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
1: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो है एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
0: मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हमने दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोओ हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता, जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर है, आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती है और हम यूज ही नहीं करते उसका, कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खासकर, कि हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
1: जी बिल्कुल,
0: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी, तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
1: जी बिल्कुल,
0: करो मत, हो जाओ।
1: बिल्कुल प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल,
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है, और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग बस, यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
0: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
1: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जानी।

माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाटिल।

सुन रहे हैं 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी वाजुआ का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी सायंकालीन सभा में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। आइए अब आपको अवगत करवा

श्रोताओं का स्वागत है। आइए अब आपको अवगत करवाते हैं हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण से।

अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक। वहीं 6:15 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का। रात 10 आपको लेकर चलेंगे सदाबहार नगमों के कार्यक्रम सब फिल्म संगीत पर।

विविध भारती का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर और रात्रि 9 बजे। वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी, और वहीं 7:30 पर जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम

हमारी सायंकालीन सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:51 पर, जिसमें 6:05 पर कार्यक्रम चिंतन और 6:10 पर कार्यक्रम वंदना आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों में 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान और 6:45 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती निवाद और वहीं 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत। कार्यक्रम वातायन आप सुन पाएंगे 7:20 पर और वहीं दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से के सफर पर आपको लेकर चलेंगे 8:15 पर। सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे 9:10 पर और 11 बजे। वहीं फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे 11:30 पर और एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर।

अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सायंकालीन व कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं महिला श्रोताओं के कार्यक्रम नारी लोक पर।

वेद भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे एवं दोपहर 12 बजे। वहीं समाचार आप सुनेंगे प्रातः 6 बजे हिंदी में समाचार और प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: योग कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सभी बहनों को आपकी बहन सीमा जैन का प्यार भरा नमस्कार। आत्मरक्षा के गुर सीखे, साहस के दीपक मन में सींचे, मदद मांगने में झिझके नहीं, गलत को कभी सही नहीं। बेटी की ताकत उसका ज्ञान, उसका साहस उसका सम्मान। सजग रहें, सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। जी हां बहनों, आत्मरक्षा आजकल के विषय का एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। इसी पर आधारित है हमारी आज की बातचीत, बालिकाओं को सिखाएं आत्मरक्षा के गुर। तो चलिए आइए सुने आज की बातचीत आज की खास मेहमान के साथ। आज के विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शारीरिक शिक्षिका नीता शर्मा। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इंडस्ट्रियल एरिया बांसवाड़ा में कार्यरत हैं और प्रतिवर्ष आत्मरक्षा शिविर में बालिकाओं को प्रशिक्षण देती आ रही हैं। नमस्कार नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी लोक में।
1: नमस्ते
0: नीता जी, आज के समय में आत्मरक्षा के गुर सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, विशेष रूप से बालिकाओं को सिखाना बहुत ही आवश्यक है।
1: आत्मरक्षा एक अपने आप में ऐसा शब्द है जो कि लाइफ टाइम चलता है।
0: तो सबसे पहले आप हमारी बहनों को ये बताएं कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण क्यों जरूरी है।
1: आत्मरक्षा प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के जो माहौल है उससे हमारे बच्चों को सिखाया जाए कि शारीरिक सुरक्षा कैसे करनी है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, किसी हरेसमेंट से बचने के लिए स्ट्रेंथ उसके अंदर पैदा हो, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मन से डर निकालने के लिए बच्ची खुद को अपने सक्षम महसूस करे कहीं आने जाने के लिए, दूसरा उसके आसपास का जो माहौल है खतरे को पहचान सके और अपनी स्किल उसमें डाल के उससे बच सके, दूसरा मानसिक मजबूती, तनावपूर्ण परिस्थिति जब कभी ऐसे उसके साथ सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन से उसको शांत रह के कैसे बाहर निकालना है ये उसके अंदर जरूरी है। आज फाइनेंशियल युग है, हम चाहते कि बच्ची बाहर जाए पढ़े लिखे और फिर वो बाहर कमाए, तो बाहर उसको जाने के लिए देश में अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सीमा जी, जैसे आज आप माहौल देख रहे हैं चारों तरफ यौन उत्पीड़न हैरेसमेंट का माहौल बना हुआ है, चारों तरफ बच्चे डरी हुई है, तो हमें उससे बाहर निकालने के लिए बच्ची को आत्मरक्षा प्रशिक्षण अगर हम उसको देते तो वो बाहर आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकती है निडरता के साथ, बाहर जा सकती है, जो भी उनको एजुकेशन लेनी है बेस्ट एजुकेशन के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के लिए ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण जरूरी है।
0: जी नीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के समय में हम यौन उत्पीड़न की घटनाएं बहुत ही सुनते आए हैं, ऐसे में हमारी बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना बहुत ही आवश्यक है। नीता जी, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण किस उम्र से और किस तरह से दिया जाए।
1: सीमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि बच्चों को किस उम्र से दिया जाए। हम शुरू से ही बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, ताकि जब वो बड़ी हो और उन्हें कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चे जाने से डरती कतराती, और पेरेंट्स को भी बहुत चिंता होती है कि हम बच्चों को इस फील्ड

0: मैं बिजी हूं तो पता नहीं क्या होगा, ये अपने आप की आत्मरक्षा कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये हमेशा उनको चिंता लगी रहती है, उस डर को कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए बच्ची को आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमें शुरू से ही देना चाहिए। जैसे कि आज की घटनाएं आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी एक एक दो दो साल की बच्चियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको गुड टच बैड टच शुरू से सिखाएं, उनको ना कहना सिखाएं, क्योंकि अभी तक बालिका चुप रहना सीखती थी, अब हमें अपनी बालिकाओं को ये सिखाना है कि तुम्हारे साथ बैड टच हो तो तुमको ना कहना है। उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्हें इस तरह की बातें सिखाएं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो हर फील्ड में अच्छे से माँ बाप का नाम रोशन कर पाए। सीमा जी, जिस तरह से आपने प्रश्न लिया कि बच्चों को ग्रुप कैसे सिखाए जाए, प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाए, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चियों को पेरेंट्स भी अपने घर में सिखा सकते छोटी उम्र से। सरकार द्वारा भी इसके लिए सरकारी स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते हैं, ताइक्वांडो के भी गेम्स होते हैं, आप ताइक्वांडो में अपने बच्चों को भेज सकती है, कराटे की भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं स्कूलों में प्रशिक्षण। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को हर वर्ष प्रशिक्षण देती हूँ। आप इस तरह की जो चल रही है योजना, अपने माध्यम से उन सबसे जुड़कर भी आप अपने बच्चे को इन सब चीजों का लाभ दे सकते हैं ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो बाहर वर्क प्लेस पे अच्छे से हर चीज का सामना कर पाए। सीमा जी, मैं अपने आत्मरक्षा प्रशिक्षण में बच्चियों को कई तरह के गुण सिखाती हूँ। जैसे पहला है पंच मारना, उसमें बच्चों को सबसे पहले मिडिल पंच सिखाया जाता है। मिडिल पंच में सिखाया जाता है कि आपकी छाती पर कोई वार कर रहा है तो आप पंच के माध्यम से उससे बचाव कर सके। उसके बाद हमारा आता है लोअर की, तो आपके जो नीचे की साइड जो अपने आर्म होते हैं उसको बचाव कैसे किया जाता है उस पंच में हम वो बताते हैं। तीसरा पंच हमारा होता है अपर, आपके सिर पर कोई लाठी से वार कर रहा है तो आपको उससे अपना बचाव कैसे करना है। उसके बाद हम सिखाते हैं बच्चों को किक मारना, तो किक में भी हम तीन ही तरह से सिखाते हैं, अपर मिडिल लोअर। अपर किक में अगर वो आपको लात में फंसा रहा है, गिराना चाह रहा है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं ये सिखाते हैं। कई जो पेट पे लात मार के आपको गिराना चाह रहे हैं तो मिडिल किक में मारेंगे आप तो उससे बचाव किया सकता है। कोई आपके चेहरे पे आपको प्रहार कर रहा है तो आपको अपर किक से उससे कैसे बचाव करना है ये सिखाया जाता है। अब है ब्लॉक, कोई हम पे हम उस पर प्रहार कर रहे हैं लेकिन कोई हम पे करने वाला है तो उससे बचाव के लिए हम लोग इसको ब्लॉक सिखाते हैं, मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, अपर ब्लॉक। सीमा जी, उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कई लड़कियां हैं जो वर्क प्लेस से वापस लौटती हैं, उनको टाइम हो जाता है, लेट हो जाती है, तो उन बच्चों को देखना है कि हमारे कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, उन सब चीजों के लिए उन्हें तैयार रहना है। पीछा कर रहा है, किसी ने पीछे से आपकी चोटी पकड़ ली तो आपको उस समय अपने जो अपने हील पहननी है, बच्चियां हील पहनती है, उसके पैर पे रखकर जोर से दबानी है। दूसरा, आपकी जो कोहनी है उस कोहनी को उसके प्राइवेट पार्ट पे आप मार सकती है, पिन लगे होते हैं बालों में उस पिन को आप उसके आंखों में चुभा सकती है। कभी कभी बच्चों को ऐसा होता है कि लेट नाइट उनको गाड़ी में भी आना पड़ता है, अब वो जब गाड़ी में बैठी तो सबसे पहले बैठते समय वो अपना मोबाइल चालू करे और GPS चालू करके अपने जो परिचित है पेरेंट्स है उनको वो लोकेशन भेज दे कि हम इस लोकेशन पर चल रहे हैं, फिर भी लिखा रखते रहे, ध्यान रखे कि वो ड्राइवर हमें कहीं शीशे में देख तो नहीं रहा है या हमें गलत साइड पे गलत ठेके पे हमें ले जा रहा है। अगर चाइल्ड लॉक उसने लगा दिया है तो हमें सिर पे अपनी पिन लगी होती है, उस पिन को निकाल कर अपने लॉक पे दबा के चाइल्ड लॉक खोल लेना है। और कभी लगे वो गलत ठेके पे जा रहा है तो हमको उससे बचाव करने के लिए हमारे पास हर महिला के पास पर्स होता है, बच्चियां गले में चुनरी भी डालती है, तो आपके पर्स की जो स्टेप्स होती है उन स्टेप को उसके गले में डाल के आप उसको पीछे खींच सकती है। आप उसको जोर से झटके से पीछे खींचेंगी तो उसको गाड़ी रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा और गाड़ी रुक जाएगी। तब आप पहले आप चाइल्ड लॉक खोलिए, फिर गाड़ी से उसको पीछे पर्स से पीछे खींचिए, आप अपनी चुनरी का भी इस्तेमाल कर सकती है। इतने में आप अपने आप में कॉन्फिडेंस होकर आप चिल्लाइए भी, चिल्लाने से कुछ लोगों को पता चलेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आपके मदद करने को आगे आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको साइड से कोई प्रहार कर रहा है, आप भी चल रहे हैं आपको ध्यान नहीं है, अगर कोई साइड से आता है तो आप कोहनी नहीं मारकर उसको अपना बचाव कर सकती है या आपका पर्स जोर से उसके मुंह पर मार सकती है। अपने साथ पर्स में आप स्प्रे भी रखिए, आप स्प्रे उसके आंखों में डाल सकती है, स्प्रे डाल देने से कुछ समय के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाएगा। इस समय में आपको वहां से भागने का चिल्लाने का वक्त मिल जाएगा, कोई तो आपकी मदद के लिए भी उस समय आ सकता है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
1: जी चिंता जी, आपने हमारी बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। चलते चलते आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सीमा जी, मैं अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहूंगी कि हम अभी तक ये कहते हैं हमारी बेटियों पर चांद जैसा बना है, पर अब मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि चांद तो हमारी बच्ची को बनाना है लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी बच्ची को सूरज जैसा बनाना है, उसके अंदर ये भाव पैदा करना ताकि कोई उसको देखकर कुछ गलत करने की तो सोचे ही नहीं। तो हमें अपने बेटियों को सपने

0: देखना सिखाना, लेकिन उसके साथ उसकी सीमाएं, उसकी सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उसको मदद मांगना, ये सभी हमको सिखाना चाहिए। तो अगर बच्ची बालिका सुरक्षित होगी तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों को अच्छे से पूरा कर सकेगी।
1: नीता जी, आपने हमारी बहनों को बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि जब बच्ची सुरक्षित होगी तो आत्मविश्वास के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सीमा जी।
2: बहनों, इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद आइए सुनते हैं एक बहुत ही जोशीला गीत और साथ ही सुनेंगे संदेश।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेरी आंखों की रोशनी किसी की दुनिया सजा दे, मेरे जाने के बाद भी किसी के जीवन में उजियारा ला दे। जी हाँ बहनों, आंखें बहुत अनमोल हैं। इन आंखों से हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, दुनिया में बिखरे रंगों को देखते हैं, अपने के चेहरों को पहचानते हैं, लोगों की भाव भंगिमा को देखकर उनके स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं। ये दो आंखें हमारे जीवन में उजाला भर देती हैं। लेकिन बहनों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में आंखों की इस रोशनी का अभाव है। वे इस रंगीन दुनिया को हमारी तरह नहीं देख सकते। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी या जन्मजात अंधापन। ऐसे में बहनों, नेत्रदान करना किसी के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है।

मृत्यु दिन का मतलब है मृत्यु के बाद आंखों के उपयोगी हिस्से दान करना, जिससे किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को दृष्टि मिल सके और वो हमारी आंखों से इस संसार को देख सके। बहनों, नेत्रदान एक महान मानवीय कार्य है, लेकिन बहुत से लोग मृत्यु के बाद अपने आत्मीय परिजनों की आंखें दान नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति का चेहरा बिगड़ जाएगा या मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बहनों, बल्कि ऐसा करना एक निर्धारित चिकित्सीय प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व दी गई स्वीकृति के बाद ही किया जाता है। ऐसा करने से किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि नेत्रदान संबंधित व्यक्ति, उसके परिवार और समाज में आशा जगाने का संदेश है। जिस व्यक्ति ने किसी कारणवश अपनी आंखें खो दी हो, आपकी इस संवेदनशील पहल से वह अपने बाकी के बचे हुए जीवन को अच्छी तरह से जी पाएगा और अपने आसपास की दुनिया को भी देख पाएगा। इसलिए बहनों, अपने जैसा कि आज से ही नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो रहा है, हम यह संकल्प करें कि मृत्यु के बाद हम किसी दृष्टिहीन को अपने नेत्रदान द्वारा एक अच्छा जीवन देने की पहल करेंगे। आओ मिलकर यह प्रण लें, अपने नेत्रों का दान कर बस जाते जाते दी जाए किसी को दृष्टि का वरदान। इस चर्चा के बाद बातें अभी और भी हैं बहनों, लेकिन समय है एक ब्रेक का, तो आइए सुनते हैं एक गीत।

नारी को सम्मान मिले, हर सपने को आसमान मिले। बेटी हो या बेटा प्यारा, दोनों को अवसर मिले बराबर सारा। दोनों महिला और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ये बात हम वर्षों से सुनते आए हैं। जब इस गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होंगे तभी यह अपना संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ पाएगी। लेकिन केवल बात करने, भाषण देने, सभा या सम्मेलनों का आयोजन कर लेने से ही महिलाओं को समानता नहीं मिल पाएगी। इसके लिए जागरूकता का होना और जागरूकता फैलाना दोनों ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। दोनों समानता का मतलब किसी एक का आगे निकलना नहीं बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलना है। आज महिलाएं शिक्षा, लेखन, खेल, विज्ञान, कला, प्रशासन और हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। इस समानता की सबसे पहली शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। यदि एक महिला को बचपन से ही अपने घर में एक बेटी, पत्नी, माँ के रूप में एक बेटे, पति और पिता के समान ही प्रेम, सम्मान और व्यवहार मिलता है तो निश्चित रूप से वह महिला अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है। 26 अगस्त के दिन ही महान समाज सेविका मदर टेरेसा को भी उनकी जयंती पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन हम सभी को करुणा, प्रेम और मानवता की सीख देता है। महिला समानता दिवस और मदर टेरेसा का जीवन हमें एक सुंदर संदेश देता है कि हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है और एक संवेदनशील व्यक्ति से ही एक सशक्त समाज बनता है। आइए बहनों, आज हम ये संकल्प लें कि अपने परिवार और समाज में भेदभाव को कम करेंगे, बेटों और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उनकी योग्यता अनुसार समान अवसर देंगे और साथ ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा तैयार रहेंगे। बहनों, बारिश का मौसम है, ऐसे में ये मौसम ठंडे फुहारों और हरियाली के साथ बहुत सी बीमारियां ले आता है, विशेष रूप से आंखों में संक्रमण की। इसलिए आंखों में किसी भी तरह की समस्या होने पर अपनी मर्जी से आई ड्रॉप डालने के बजाय किसी आंखों के चिकित्सक से परामर्श लें और कुछ सावधानियां और साफ सफाई रखकर अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। बेटी हो साहसी, नारी हो समान, नेत्रदान से जगमग हो जहान, सेवा, सुरक्षा और सम्मान का साथ, स्वस्थ रहें आंखें, खुशहाल हो हर बात। इन्हीं संदेशों के साथ कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत दीजिए। आपकी बहन सीमा जैन को नमस्कार।

श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के गाने के साथ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

श्रोताओं, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म से। प्रकाश मेहरा ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गली।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
10: तुम्हारी याद सताती है
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में डॉन फिल्म का गाना। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

वारे बंबई वा वारे वारे बंबई वा बिन पानी का धोबी तालाब देखो देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में एक दूजे के लिए इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल

0: पाकिस्तान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ05, NJ50 और NJ100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केन्द्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और सुजाता की आवाजों में हलचल फिल्म का गाना। समीर ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है विद्यासागर ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही

0: बेहतर काम उन्होंने किया, एक निर्देशक और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए रिशाद कामिल का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की। फिल्म का नाम अजब प्रेम की गजब कहानी।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

नमस्कार श्रोताओं, मैं आराधना आप सबका स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक भावुक और जागरूक करने वाला नाटक, बचपन का अधिकार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुनते होंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग फोन कॉल व मैसेज के द्वारा हमें सुझाव देते हैं। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर नोट करें। हमारा फोन नंबर है 9414066730। मैं फिर से एक बार नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा नंबर है 9414066730। तो श्रोताओं, हम अपने उन श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तथा लगातार हमसे फोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। उनके नाम हम कार्यक्रम के अंत में आपसे जरूर साझा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है बाल विवाह की बेड़ियां।

बाल विवाह भारतीय समाज की एक अत्यंत गंभीर और जटिल सामाजिक समस्या है, जो न केवल बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह कुप्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी कई क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक असमानता, सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादी मानसिकता के कारण जीवित है। बाल विवाह का अर्थ है ऐसे बच्चों का विवाह जो कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुंचे होते, अर्थात लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम। बाल विवाह के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है गरीबी, जहां माता पिता अपनी आर्थिक जिम्मेदारी कम करने के लिए जल्दी विवाह कर देते हैं। और शिक्षा, जिसके कारण लोग इसके दुष्परिणामों से अनजान रहते हैं। और सामाजिक परंपराएं, जहां इसे सम्मान या परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कई बार सुरक्षा की भावना से भी माता पिता अपनी बेटियों का जल्दी विवाह कर देते हैं, जिससे वे समाज की बुरी नजरों से बच सकें। इस प्रथा का प्रभाव अत्यंत हानिकारक होता है, विशेषकर बालिकाओं के लिए। बाल विवाह उनके बचपन, शिक्षा और स्वतंत्रता को छीन लेता है। कम उम्र में विवाह होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनका आत्मनिर्भर बनना बहुत कठिन हो जाता है। इसके साथ ही कम उम्र में गर्भधारण उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से भी वे तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना करती हैं। बाल विवाह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है।

0: तक लोग स्वयं इस कुप्रथा के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे तब तक इसे पूरी तरह समाप्त करना बहुत कठिन होगा। बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाएं और एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
1: रीना बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो रहा है।
2: जी माँ, बस किताब ही रख रही हूँ।
3: रीना, आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है।
2: पिताजी क्यों?
3: कल गांव के शर्मा जी आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और मैंने उन्हें हाँ कह दी है।
2: क्या? लेकिन पिताजी, मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने।
1: मैंने भी इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन ये मान नहीं रहे।
3: हम गरीब लोग हैं, लड़की की शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा रहता है, बाद में खर्च और बढ़ जाता है।
2: पिताजी, मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ, अगर अभी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाएगी।
3: मेरी बेटी, समाज भी तो देखना पड़ता है।
2: लेकिन किस समाज मेरे सपने पूरे करेगा?
1: रीना सही कह रही है जी, आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं।
3: बस मैंने फैसला कर लिया है।
4: रीना, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है?
2: मैडम, मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं।
4: क्या? लेकिन तुम अभी नाबालिग हो, ये गलत है।
2: लेकिन मैडम, हमारे गांव में तो कई लड़कियों की शादी जल्दी ही हो जाती है।
4: रीना, कोई चीज सालों से होती आ रही हो इसका मतलब ये नहीं कि वह सही है।
2: पर टीचर, मैं क्या कर सकती हूँ?
4: तुम ही सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि कानून भी इसके खिलाफ है।
2: क्या? कानून भी इसके खिलाफ है? कैसे मैडम?
4: हाँ, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इससे कम उम्र में शादी करवाना कानूनन अपराध है।
2: लेकिन मैडम, मेरे माता पिता तो मेरी भलाई ही चाहते हैं।
4: बिल्कुल, हर माता पिता अपने बच्चों के भलाई चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी होना भी जरूरी है। हमारे संविधान ने बच्चों को कई अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लड़कियों और बच्चों के साथ भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 39F सुरक्षित और स्वस्थ बचपन का अधिकार।
2: अगर कोई जबरदस्ती शादी करवाए तो
4: तुरंत मदद मांगनी चाहिए। तुम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर सकती हो। पुलिस और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
2: मैडम, क्या आप मेरे पिताजी से बात करेंगी?
4: हाँ जरूर रीना, बच्चों के सपनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: कौन?
4: नमस्ते, मैं रीना की शिक्षिका हूँ।
3: जी आइए।
4: मुझे पता चला कि आप रीना की शादी करवाना चाहते हैं।
3: जी, लड़की बड़ी हो रही है, गरीब आदमी हूँ मैडम, जिम्मेदारी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ।
4: लेकिन रीना अभी बच्ची है, इस उम्र में शादी उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य तीनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
1: हमें तो कभी किसी ने समझाया ही नहीं।
4: कम उम्र में शादी होने से कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, जल्दी माँ बनने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
3: लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
4: आज समाज बदल रहा है, पढ़ी लिखी बेटियां परिवार का सहारा बन रही हैं। अगर रीना पढ़ेगी तो आपके परिवार का नाम रोशन करेगी।
2: पिताजी, मैं वादा करती हूँ, मैं खूब मेहनत

0: करूंगी।
1: जी इसे पढ़ने दीजिए।
2: लेकिन कानून,
1: बाल विवाह करवाना अपराध है, इसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
2: मुझे लगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं अपने बेटी का बचपन ही छीन रहा था।
0: पिताजी।
2: नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, पहले तुम पढ़ोगी।
1: भगवान आपका भला करे मैडम जी।
0: धन्यवाद पिताजी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी।
1: याद रखिए, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा पाने का, सुरक्षित बचपन का, अपने सपने पूरे करने का, हिंसा और शोषण से सुरक्षा पाने का।
2: और माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी सुरक्षा करें और उनके सपनों का सम्मान करें।
1: बेटियां बोझ नहीं होती, वे परिवार की ताकत होती हैं।
0: अगर आपके आसपास कहीं बाल विवाह हो रहा है तो चुप मत रहिए,

0: श्रोताओं, तो देखा आपने किस प्रकार आज चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपने बच्चों की जिंदगी को खराब होने के लिए राजी हो जाते हैं। छोटी सी ही उम्र में उन्हें खेल कूद, पढ़ाई, खुशियों से परे ले जाकर दुख में लाद देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आ जाता है। ऐसा ही करने से बच गए सोहन लाल जी। समाज के डर और बच्चे के भविष्य में सही चुनाव करके जरूरी है हमारे आसपास गुड़िया की अध्यापिका जैसे लोगों का होना, जो हमें हमारे सही के लिए समझाते हैं और समाज में एक प्रगतिशील सोच को रखते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए, अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमें फोन कर सकते हैं या आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। फोन करने के लिए हमारा नंबर नोट करिए। हमारा नंबर है 9414066730। मैं फिर से एक बार नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा नंबर है 9414066730। श्रोताओं, जिस प्रकार हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि हम अपने उन श्रोताओं के नाम आपके साथ साझा करेंगे जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं तथा हमसे बातचीत करते हैं, उनके नाम है देवीलाल जी बांसवाड़ा से, पलक जी कोटपुतली से, अशोक सक्सेना जी प्रताप नगर से, राजू जी उदयपुर से। श्रोताओं, आप भी इसी तरह जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम हमारी बेड़िया को। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या 13 साल की उम्र में गुड़िया की शादी कराना सही था या उसे अपने सपने पूरे करने देना चाहिए ये सही था? आप क्या सोचते हैं बाल विवाह के बारे में? सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं आराधना आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों द्वारा लोगों को ईपीएफओ और आयकर डेटा तक पहुंच पर चिंता जताई। केंद्र सरकार को ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। देश में यूपीआई प्रणाली के 10 साल पूरे। 11 देशों ने डिजिटल भुगतान की इस भरोसेमंद सेवा को अपनाया। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 5

0: जिलों में अत्यधिक बरसात, 18 जिलों में सामान्य और 18 में सामान्य से कम बारिश हुई और राज्य में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी निभाने की अपील। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की निजी संस्थाओं तक पहुंच को लेकर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इसके लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय करने पर विचार करने को कहा है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी का निजी कंपनियों की ओर से दुरुपयोग न हो सके। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि लोगों द्वारा सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया है। पीयूष शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ये सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की मदद से इस मुद्दे से निपटने के लिए ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए। देश में यूपीआई प्रणाली शुरू हुए आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। श्री मोदी ने लिखा कि यूपीआई प्रणाली के जरिए डिजिटल भुगतान बड़ा निर्णायक फैसला साबित हुआ है। इस दौरान यूपीआई के लेन देन में लगभग 13,000 गुना बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल भुगतान से लेन देन तेज और सरल हो गया है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई सहित 11 देशों ने डिजिटल भुगतान की इस भरोसेमंद सेवा को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक संबोधन में यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंटरफेस बताया।
1: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है।
2: भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एआई को शामिल करने की बात कही है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में आईसीएआर संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों और किसानों के बीच दी जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों से समय की मांग के अनुसार शिक्षण पद्धति में बदलाव करने और एआई आधारित उपकरणों को शामिल करने को कहा।
3: ताजी डिग्री बांटने से काम नहीं चलेगा, समय बदल रहा है, खेती भी बदल रही है, तो हमारी कृषि शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। मैं खेती केवल क्लासरूम में कृषि की पढ़ाई नहीं हो सकती, खेती के लिए कक्षा के अलावा सोचने का बहुत जरूरत। सवेरे कक्षा में बैठे, दोपहर में खेत में जाए, वहां प्रैक्टिकल करे, शाम को खेले कूदे। मुझे लगता है कि किसानों के बीच बैठे, उनके साथ चर्चा करे, प्रैक्टिकल भी करे, बातचीत करे, समझे समझाए। विद्यार्थी के लिए डिग्री लेकर नहीं, एक विचार लेकर निकले, एक समाधान लेकर निकले।
0: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल स्तर की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। आईसीएसआई के जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि जून महीने में ली गई इस परीक्षा में जयपुर केंद्र से 2 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि नीम का थाना की खुशी अग्रवाल ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। खुशी ने आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय निरंतर अभ्यास को दिया।
4: मेरा शेड्यूल मेनली तो यही था कि मुझे सेल्फ स्टडी से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैंने 3 महीने रखे थे एग्जाम को पहले। एग्जाम के लिए मैंने मई जून एकदम बेस्ट दिया था, अपना फुल अटेम्प्ट किया था, मैंने 100 मार्क्स का पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये था। सभी फैमिली फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, 5 सब्जेक्ट की क्लासेज में डेली कम्प्लीट कर लेते थे।

0: mostly revision and tests, where full syllabus ke 2-2 test diye the.
1: जयपुर केंद्र से महिमा मंगल ने देश भर में 16वां स्थान प्राप्त किया। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों परीक्षाओं की वरीयता सूची में पहले 3 स्थानों पर बालिकाएं रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। अलवर, बारा, भरतपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर और राजधानी जयपुर में आज हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती अंचल में मॉनसून की मजबूत झड़ी ने पूरे क्षेत्र को सराबोर कर दिया है। कोटा और आसपास के इलाकों में बीती रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी दिनभर बना रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई। खेती किसानी के लिहाज से किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। वहीं नौनेरा बैराज के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है। झालावाड़ के काले सिंध और राजगढ़ बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य में जलाशयों की स्थिति की बात करें तो जल संसाधन विभाग के अनुसार छोटे बड़े 693 में से 43 बांध लबालब हैं, वहीं 445 आंशिक रूप से भरे हैं। प्रदेश में अब तक भी भरतपुर और बीकानेर सहित 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 18 जिलों में सामान्य और 18 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज की तरह कल भी 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान डीग, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा सहित कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। हालांकि कोटा संभाग में 27-28 अगस्त को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उधर पश्चिमी राजस्थान में भी अगले सप्ताह तक मानसूनी परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में मॉनसून के दौरान सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। जयपुर नगर निगम की ओर से स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर की थीम पर ये अभियान चलाया गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि ये अभियान 7 सितंबर तक 6 चरणों में चलेगा। इसके तहत शहर के विभिन्न जोन में चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई की जाएगी। इसके बाद एंटी लार्वा गतिविधियां होंगी और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और स्प्रेइंग करवाई जाएगी। प्रदेश में अगले महीने 2 चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को गीत, पोस्टरों और रैलियों के जरिए वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर रंगोली मांडना, मानव श्रृंखला और मतदाता शपथ के कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों और स्वीप गतिविधियों के तहत आज सलूम्बर में बाइक रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने और लोकतंत्र में भागीदारी निभाने की जानकारी दी गई। उधर बालोतरा में छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संदेश से सजी राखियां बांधकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पाली नगर निगम में मतदान की तिथि में बदलाव किया है। यहां 9 तारीख के स्थान पर 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 9 सितंबर को पर्युषण महापर्व होने और जिले में जैन धर्मावलंबियों की अधिक संख्या होने के कारण ये फैसला लिया गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से राजधानी जयपुर में आज से ऑपरेशन सेफर रोड्स की शुरुआत हुई। इसके तहत राहगीरों और वाहन चालकों को गूगल मैप पर वॉइस और पॉपअप मैसेज के जरिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के बारे में सूचित किया जाएगा। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर 3 महीने में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की जाएगी।
2: हर 3 माह पे अगर कोई नए पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जहां के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसको हम उसमें ऐड कराएंगे गूगल के द्वारा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कि जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा था उसमें उसका निदान हो गया है तो वो एक्सीडेंट का कारण अगर वहां समाप्त हो गया तो उसको हम लोग हटाने का भी कार्य करते रहेंगे। तो ये अभी हमने 3 माह का सोचा है, आगे एक्सपीरियंस के आधार पर इस टाइम को हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज दौसा में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में शिक्षा

0: व्यवस्था, टीबी की स्थिति और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। राज्यपाल ने शिक्षा अधिकारियों से विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सहित कई मानकों पर चर्चा की। श्री बागड़े ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और पढ़ाई नहीं छोड़े, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। राज्यपाल ने दौसा को टीबी मुक्त बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली, साथ ही नशा मुक्त दौसा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थाओं के आसपास नशीले पदार्थों की उपलब्धता पूरी तरह रोकी जानी चाहिए। इसके लिए नशा कारोबारियों के नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
1: मैं जिस जिला में जाता हूं उस जिला में बोलता हूं कि नशा मुक्त जिला, अपना जिला जो है नशा मुक्त करो और वो थोड़ा सख्ती से करो। और कोई सरकारी डिपार्टमेंट कुछ लोग दारू पीते होंगे या नशा पानी करते होंगे, जो सरकारी कर्मचारी है उनको पहले मुक्त करो तो भी लोगों का असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्राइमरी शिक्षा, उच्च प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये हमारे सभी शिक्षकों का एक पाया है, वो मजबूत रहा तो बच्चे आगे जाते हैं।
0: राज्यपाल श्री बागड़े इसके बाद महवा भी पहुंचे। उन्होंने एक निजी विद्यालय में CBSE कबड्डी गर्ल्स स्टेट क्लस्टर टूर्नामेंट में शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। उनका जन्म सऊदी अरब के प्रमुख शहर मक्का में हुआ था। ईद मिलादुन्नबी का पर्व अमन, शांति, भाईचारे और मानवता का प्रतीक है। इस दिन को 12 वफाक भी कहा जाता है। इस अवसर पर घरों, मस्जिदों, बाजारों और प्रतिष्ठानों को सजाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों द्वारा लोगों को EPFO और आयकर डेटा तक पहुंच पर चिंता जताई। केंद्र सरकार को ठोस सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। देश में UPI प्रणाली के 10 साल पूरे, 11 देशों ने डिजिटल भुगतान की इस भरोसेमंद सेवा को अपनाया। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 5 जिलों में अत्यधिक बरसात, 18 जिलों में सामान्य और 18 में सामान्य से कम बारिश हुई। और राज्य में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी निभाने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कमलेश कुमार झड़ोला। जिले में अगस्त माह में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कानून व्यवस्था से जुड़े काम जारी रहे। बारिश से खरीफ फसलों को लाभ मिला। श्रावण मास में धार्मिक आयोजन हुए और पुलिस ने नशे तथा अपराध के खिलाफ कार्रवाई की। नगरीय निकाय चुनाव के तहत सलूम्बर नगर परिषद में 11 सितंबर को मतदान और 14 सितंबर को मतगणना होगी। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन होगी। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 3 सितंबर को नाम वापसी होगी। पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 2,50,000 रूपये तक का चुनाव खर्च कर सकेंगे। चुनाव की तैयारियों के तहत मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप और साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। ITI खोलड़ी में EVM स्ट्रांग रूम, CCTV और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बिना अनुमति सभा, जुलूस और रैली नहीं निकाली जा सकेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर फर्जी वोटर लिस्ट, गलत लिंक, OTP और QR कोड के जरिए होने वाली ठगी से सावधान रहने की अपील की गई है। साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने को कहा गया है। पुलिस ने पिछले दिनों नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक कार से करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अलग अलग नंबर प्लेट भी मिली। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जनजातीय बालिका आवासीय विद्यालय में पिछले दिनों कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर अपराध

महिला अधिकार और कानूनों की जानकारी दी गई। विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक में पोक्सो और किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। बाल श्रम, बाल विवाह और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया गया। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों विकास कार्यों की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, बिजली और जल संसाधन तथा पंचायती राज विभाग से जुड़े कार्यों की जानकारी ली गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के समय पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। कृषि क्षेत्र में झल्लारा

0: इसमें स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंचकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर रहे हैं और बुखार के लक्षण वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए कलूथड़ा और जेताड़ा की ब्लैक स्पॉट का पिछले दिनों निरीक्षण किया गया। दुर्घटनाएं रोकने के लिए साइनेज, रिफ्लेक्टर और स्पीड ब्रेकर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं जिला स्तरीय बैंकर्स बैठक में किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सलुम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी कंपनियां कानून जनतारी ईपीएफओ और इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारियां ताई पहुंच माथा चिंता जताई। केंद्र सरकार ने हिफाजत रा मजबूत जतन लागू करन रा हुकम दीना। देश में यूपीआई रे जरिए चुकारा रा 10 साल पूरा भया। 11 देश डिजिटल भुगतान री ई भरोसेमंद सेवा ने अपनाई। प्रदेश रा 5 जिला में चौमासारी मौजूदा ऋतु में हाल ताई घणो में बरस्यो। 18 जिला में सामान्य और 18 में सामान्य कम बिरखाफी। और राज्य में आवता महीना वेवन वाला नगर निकाय चुनाव सारू जागरूकता अभियान। स्वीप गतिविधियां जरिए चुनाव में भागीदारी करण री अपील। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कने और आयकर रिटर्न में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारियां ताई गैर सरकारी संस्थाओं री पहुंच जुड़ी चिंता जताई है। अदालत केंद्र सरकार सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद व्यक्तिगत जानकारियां रो निजी कंपनियां कानून बेजा इस्तेमाल करण माथे रोक लगावन रे बारे में विचार करण सारू कहो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो कि जनता कानून सरकारी संस्थाओं ने दिली जी व्यक्तिगत जानकारी रो गलत इस्तेमाल नहीं होनो चाहिए। एक जना पीयूष शर्मा री ओर दायर जनहित याचिका माथे सुनवाई नटता थका मुख्य न्यायाधीश कहो कि केंद्र सरकार ने जानकारों की मदद इनू जुड़िया मजबूत हिफाजती इंतजाम लागू करना चाहिए। देश में यूपीआई सिस्टम सरूफिया 10 साल पूरा फेंक्या है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए जनता ने यूपीआई जुड़िया अनुभव बतावन सारू कहो है। श्री मोदी मांडियो के यूपीआई रे जरिए डिजिटल तरीकों लेन देन रो फैसलो निर्णायक साबित हुयो। इस दौरान यूपीआई रे जरिए लेन देन में करीब 13,000 गुणा बढ़ोतरी हुई। फ्रांस, सिंगापुर और यूएई समेत 11 देश ई डिजिटल भुगतान री भरोसेमंद सेवा ने अपनाई। प्रधानमंत्री यूपीआई ने दुनिया रो सब मोटो डिजिटल इंटरफेस बतायो।
2: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है।
3: भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेतीबाड़ी जुड़ी भुनाई लिखाई रा हलका माय एआई न शामिल करण बाबत कहो है। वे आज नई दिल्ली माय आईसीएआर संस्थाना रा कुलपतियां और निदेशकान सम्मेलन माय बोल रहा है। श्री चौहान कहो कि कृषि शिक्षा कक्षारी बजाय खेता और किसाना बीच दी जानी चाहिए। वह विश्वविद्यालय समय री मांग रे मुजब भणावन रा तरीका माय बदलाव करण और एआई आधारित साजो सामान शामिल करण सारू कहो।
4: ये कागजी डिग्री काटने से काम नहीं चलेगा, समय बदल रहा है, खेती भी बदल रही है, हमारी कृषि शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। न खेती केवल क्लासरूम न कृषि की पढ़ाई नहीं हो सकती, खेती के लिए कक्षा के अलावा सोचने का तो बहुत जरूरत। सवेरे कक्षा में बैठे, दोपहर में खेत में जाए, बहुत प्रैक्टिकल करे, शाम को खेले कूदे। मुझे लगता है कि किसानों के बीच बैठे, उनके साथ चर्चा करे, प्रैक्टिकल भी करे, बातचीत करे, समझे समझाए, विद्यार्थी के लिए डिग्री लेकर नहीं।

0: विचार लेकर निकले, एक समाधान लेकर निकले।
1: द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जून 2026 में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल री परीक्षा मारा नतीजा नो ऐलान करती नो है। आईसीएसआई जयपुर चैप्टर रा अध्यक्ष सीएस सुमित कुमार श्योराण बतायो कि प्रोफेशनल परीक्षा माए जयपुर केंद्र दो विद्यार्थी मेरिट माए ठोड़ बनाई। नीमका थाना री खुशी अग्रवाल आखा देश माए अव्वल रही। खुशी आकाशवाणी समाचार जयपुर सागे खास बातचीत माए लगातार अभ्यास ने सफलता री कुंजी बताई।
2: मेरा शेड्यूल मेन तो यही था कि मुझे सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैंने 3 मंथ रखे थे एग्जाम को पहले। एग्जाम के लिए मैंने मई जून एकदम बेस्ट दिया था, अपना फुल अटेम्प्ट किया था मैंने। 100 मार्क्स का पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था। फैमिली फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। 5 सब्जेक्ट की क्लासेज में डेढ़ कम्प्लीट कर लेते थे, मोस्टली रिविजन एंड टेस्ट। मैंने फुल सिलेबस के 2 टेस्ट दिए थे।
1: जयपुर केंद्र री महिमा मंगल देश भर में 16वां स्थान हासिल किन्नो। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षा मारी मेरिट लिस्ट में पहली 3 ठोड़ा महिला परीक्षार्थी कब्जो जमायो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा उगनी हल्का में झमाझम बिरखा भे रही है। अलवर बारा भरतपुर टोंक कोटा सवाई माधोपुर और राजधानी जयपुर में आज हल्की मछला दर्जारों में परस्यो। मौसम विभाग ने मुजब कोटा और आरएसआर हल्का में लारली रात सरूफियो बारिश रो दौर आज ही चालतो रहो, जो खेती किसानी सरू फायदेमंद मान्यो जा रो है। नौनेरा बैराज रा 2 दरूजा खोल और 2 पानी निकालो जा रो है। झालावाड़ जिला रा काली सिंध राजगढ़ बंधा में पानी छोड़ो जा रो है। जल संसाधन विभाग ने मुजब छोटा मोटा 693 बंधा मायू 43 पूरा भर गया है, जबकि 445 थोड़ा घना भरिया है। राज्य में हाल ताई डीग भरतपुर और बीकानेर समेत 5 जिला में घनो पानी बरसियो है, जबकि 18 जिला में सामान्य और 18 जिला में सामान्य कम बिरखा भी है। मौसम विभाग काली डीग सवाई माधोपुर झालावाड़ और कोटा समेत 17 जिला में बिरखारो येलो अलर्ट जारी किनो है। 27 अगस्त 2 सितंबर बीच प्रदेश का उगनी हल्का में बारिश कम पड़बारा आसार है। दूजगानी राज्य रा आतुनी हल्का में आवता सप्ताह ताई चौमासारी बिरखा मंदी रभन री संभावना है। राजधानी जयपुर में चौमासारी ऋत में साफ सफाई री व्यवस्था बेहतर बनावण और मौसमी बीमारियां रो पसारो रोकण सारू आज खास अभियान शुरू करी चियो। जयपुर नगर निगम री ओर स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर री थीम माथे ओ अभियान 6 दौर में 7 सितंबर ताई चलायो जावेला। निगम रा आयुक्त बतायो कि रते शहर रा न्यारा न्यारा जोन में अलग अलग दौर में साफ सफाई कराई जावेला। ई पाछे मच्छर पनपमा रोकण सारू जतन करिया जावेला। ई सागे मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू फोगिंग कराई जावेला। राज्य में आवता 2 दौर में फेमण वाला नगर निकाय चुनाव सारू मतदाता जागरूकता अभियान चलायो जा रो है। इन तहत गीता पोस्टर और रैलियां रे जरिए वोट जरूर देवण री सीख दी जा रही है। इस आगे स्कूल कॉलेज और जनता री आवन जावण री ठोड़ा रंगोली मानना मानव श्रृंखला बनावण और वोट देवण री शपथ दिलावण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। स्वीप अभियान रे तहत आज सलूम्बर माए स्कूटर मोटरसाइकिल री रैली निकाली ची। इरे जरिए लोगों बिना डरिया वोट देवण री अरज करी ची। बालोतरा माए टावरिया मतदाता जागरूकता संदेश वाली राखियां बांधर वोट देवण बाबत जाग जगाई। ई बीच राज्य निर्वाचन आयोग पाली नगर निगम चुनाव माए वोट देवण री तारीख 9 बजाय 11 सितंबर कर दीनी है। 9 सितंबर ने पर्युषण महापर्व भेवण और जिला माए जैन धर्म मानबा वाला की 32 तादाद ने ध्यान रखता थका ओ फैसलो करी चियो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी और सरोगेसी सेवाओं में जुड़िया नियमों का उल्लंघन रा आरोप में एक फर्टिलिटी सेंटर समेत 9 केंद्र रा रजिस्ट्रेशन निलंबित कर देना है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव बतायो कि वो केंद्र अखबार में दिया गया विज्ञापन में भ्रूण ने नीला रंग में बतायो हो। महकमो इन्हें पहली नजर में लिंग चयन जुड़ी सेवा रा प्रचार रो संकेत मानता थका आ कार्रवाई की। प्रमुख शासन सचिव बतायो कि संस्थान रा जयपुर में 3 और भीलवाड़ा कोटा उदयपुर अजमेर

0: नगर जोधपुर में एक एक एआरटी सरोगेसी सेंटर रा रजिस्ट्रेशन निलंबित करी छिया। राजस्थान पुलिस री ओर राजधानी जयपुर में आज ऑपरेशन सेफर रोड शुरू करी छियो। एरे तेत राहगीर और मोटर गाड़ियां चलावण वाला ने गूगल मैप माथे वॉइस और पॉपअप मैसेज जरिए हादसा री शंका वाला हलका ने बारे में जानकारी दी जावेला। जयपुर रेंज रा आईजी राहुल प्रकाश खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि 3 महीना में हादसा री शंका वाला संभावित हलका में हालात रो जायजो लियो जावेला।
1: हर 3 माह पे अगर कोई नए पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जहां के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसको हम उसमें ऐड कराएंगे गूगल के द्वारा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कि जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा था उसमें उसका निदान हो गया है तो वो एक्सीडेंट का कारण अगर वहां समाप्त हो गया तो उसको हम लोग हटाने का भी कार्य करते रहेंगे। तो ये अभी हमने 3 माह का सोचा है, आगे एक्सपीरियंस के आधार पर इस टाइम को हम लोग घटा बढ़ा भी सकते हैं।
0: ईद ए मिलादुन नबी काल मनाई जावेला। इस्लाम धर्म चलावन वाला पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब रा जन्मदिन री खुशी माए वो दिन मनायो जावे है। मानो जन्म सऊदी अरब रा मक्का शहर माए फियो हो। ईद मिलादुन नबी रो पर्व अमन शांति भाईचारा और इंसानियत रो प्रतीक है। ई दिन ने बारा वफाती कहो जावे है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी कंपनियां का न्यू जानकारी ईपीएफ और इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारियां तक पहुंच मात्र चिंता जताई। केंद्र सरकार ने हिफाजत रा मजबूत जतन लागू करण रा हुक्म दीना। देश में यूपीआई रे जरिए चुकारा रा 10 साल पूरा किया। 11 देश डिजिटल भुगतान री ई भरोसेमंद सेवा ने अपनाई। प्रदेश रा 5 जिला में चौमासारी मौजूदा रूप में हाल ताई घणो में बरसियो। 18 जिला में सामान्य और 18 में सामान्य कम बिरखाफी। और राज्य में आवता महीना में वन वाला नगर निकाय चुनाव सारू जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आप

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। वह टूटी छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है आपना ए किसान। किसान वाणी कार्यक्रम डी बाट उड़ीकता सगला श्रोतावा ने, काश्तकार भाई बहना ने, चंचलो ने भरियो राम राम, और सगला बड़ा बुढ़ा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मौसी, बहन भाईली, बुआ सब ने ढोगर जैसा। महेश भाई आपने भी गणे मानू राम राम सा।
6: राम राम चंचल जी आपने, और जो अपना किसान वाणी सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाई लोग है, मैंने भी घनी मोकली राम राम। और देखो चंचल जी, आपने कही की जो किसान भाई ही तो खेती बाड़ी तो करे ही, और खेती के मैं आप देखा हाँ कि भी एक जो रोजगार है जो अपनो गांव को भाई बंद है, जो विघिन खेती हो या न हो, तो खेती में कई प्रकार का एक प्रकार का रोजगार ही जो खेती से जुड़े रही और बस यू आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।
5: बिल्कुल सही बात कर रहे हो महेश भाई। आज जब मैं आ रही ना स्टूडियो की तरफ, तो आपने अथी ने नुक्कड़ पर एक मंदिर है ना, और बटे खूब सारे फूल और माला आ रही है बनी, बटे चढ़ी है, तो एक छोटी सी बाई ही और एक आदमी हो जो पोट बांध रहा चढ़ोड़ी माला की। तो मैं बोली अहिया लागे की पूछू काई बात है, मैं पूछी पाने की ये पोट बांध रहे तो चढ़ोड़ा फूल है आंखों काई कर छो। तो वह मैंने बताया कि मैं तो ईसु अगरबत्ती और धूप बत्ती बनावा छा। तो देखो आपनों काश्तकार खेती बाड़ी में तो कर ही रहे काम, और अच्छा रोजगार जो कोई सोचे ही को नहीं, जो आपने कचरो ला गया कि फूल माला है मंदिरा में भी चढ़ा, 5000 कटे पेड़ा की जड़ा में ही पड़ा है वह, और एक टी हुए गंदगी हो जावे बांसू, लेकिन वो तो बीसु ही धूप बत्ती और जो आपने अगरबत्ती बना और उठा बेचे, तो बोले ईसु भगवान की सेवा भी हो जावे, जो चढ़ोड़ा फूल है आंखों में दादर भी को नहीं हो।
6: बिल्कुल, लो खेत कमाए देखो, चाहे गुलाब को फूल हो, चाहे गेंदो को, या फिर जो चमेली को फूल हो या मोगरो, तो पहले तो देखो वह तुड़ाई के बाद में बाजार में जाए, सुगंधित फूल ही तो देखो माला बने, फूल खुले में बिके, क्योंकि अतरा जगह समारोह हुए ब्याह शादी और मंदिर का मैं रोजिना फूलों की माला आवे बिके, बाद में देखा कि जो फूल सूख गया चढ़ा दिया तो कचरे का मैं जाता पहली। पर आजकल तो कई लोग गाड़ी लेके आवे हैं और माने जो कहे भी भेड़ा करके ले जाए ही, क्योंकि बिकमाए भी कुछ फायदा जब भी ले जा रहे हैं।
5: बिल्कुल सही बात है,
6: तो इत्र और सुगंधित पदार्थ बन रहे हैं, अगरबत्ती बन रही है जो कि आप बताया, और एक अलावा औषधीय जगह टॉनिक ही और सौंदर्य प्रसादन। अब आपने तो मेरे योगों की भी गुलाब जल, फेस पैक, कई चीजें ही,
5: और आपने गेंदा का फूल आवे 2-3 रंग का आवे है ना, और बांसू कपड़ा रंगबा को अब तो बढ़िया काम हो गए है कि रंग बनाओ और काम में लियो। आपने अपराजिता का बैंगनी रंग का फूल आवे महेश भाई, मैं खुद भी बनाई एक बार, घर में टाबर बोलिया कि आज तो वह बनाओ मोमोज बनाओ साहब, मैं बनाया तो वो जो पानी उबाला और फिर बीसू जो मैदा उसना और जो वह पर्पल कलर का ऐसा सुंदर सुंदर वह मोमो बनया साहब, मैंने बहुत चोखो लागो, और न सिर्फ फूलों को खाद्य रंग के रूप में काम में आवे, आपने जो गुड़हल होवे है, अपराजिता होवे है, आंखी चाय भी बिके है, यही फूल है जो चोखी तरीका से धोर सुखार और फिर आंखों पाउडर बना चाय का रूप में बेचो जावे,
6: गुलकंद भी बना है आप बताए, हर्बल चाय है, और सजावट के माये भी देखो, एक देखो जो का सुखाने के बाद में थोड़ा सा बना तैयार करके हस्तशिल्प और सजावट का कई आइटम बने।
5: बिल्कुल साहब, तो आप कह सकते हैं कि फूला की जो खेती है या फूल जो है वे रोजगार को एक नयो रास्तो खोल रहे हैं, नयो गैलो खोल रहे हैं, बस आपने तो चालनो है
6: भी
5: पर,
6: और फिर भी वो खेत कमाए काम आ जाए है, क्योंकि जो का बागवानी में जो का पौधा ही बने फूला से जो की कंपोस्ट खाद बने, जो की प्राकृतिक और एक जैविक खाद है।
5: बिल्कुल,
6: तो बिना तैयार करके फिर जो की पौधा कमाए गिरे खेत कमाए गिरे तो नए पौधा ने और भी फायदो।
5: बिल्कुल, और देखो कंपोस्ट जो है एक जैविक खाद है, आप हमेशा ही आजकल तो बहुत जोर चाल

0: संरक्षित सुरक्षित खेती को, जैविक खेती को, तो इनमें भी आप एक कदम बढ़ा सके और फूल भी को माध्यम बन सके है। और जब माध्यम बनवा की बात आवे तब जानकारी की तरफ आपा चला और आपने जो कार्यक्रम के माध्यम हूँ जानकारी अपना श्रोताओं तक पुगावा साहब।
1: बिल्कुल जानकारी दे रहा हूँ साहब,
0: तो लियो जानकारी।
2: किसान वाणी सुनवा वाला सभी किसान भाइयों ने अनीता को घणो घणो राम राम सा। नई जानकारी और नया विशेषज्ञ के साथ आपके लिए हाजिर था। तमाम आज की जानकारी मैं आपके लिए ले रहा था जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण का बारे में। ई विषय पर जानकारी देवा के लिए आपने कार्यक्रम में पधारा छे कमलेश जांगीड़ जी, आप भंडार प्रबंधक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में पद स्थापित छे। कमलेश जी आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
3: राम राम सा।
2: जे की आज आपा जानकारी ले वाला जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण का बारे में। खेती की वर्तमान जो पद्धतियां छे जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण की आवश्यकता आज क्यों पड़ रही छे, एक बारे में किसान भाई ने विस्तार से बताओ।
3: खेती में पिछले लगभग 3 दशक के समय में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये था कि किसानों के द्वारा जो पेस्टिसाइड रासायनिक कीटनाशकों का जो इस्तेमाल था उसकी मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ाती गई।
2: जी।
3: किसान भाई एक एकड़ में जो मात्रा पिछले साल यूज कर रहा था उससे इस वर्ष की तुलना में उसमें ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वहां होने वाली जो उपज है उपज एक लेवल पे आके स्थिर हो गई और प्रतिवर्ष किसान के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली रासायनिक कीटनाशकों की जो दर है वो दर प्रतिवर्ष किसान को बढ़ानी पड़ रही है।
2: जी।
3: फिर किसान को लग रहा है कि जो मेरी उपज पैदा हो रही है उस उपज का अधिकांश हिस्सा मेरे उर्वरक और मेरी पेस्टिसाइड खरीदने में जा रहा है। परिणाम स्वरूप उसके यहाँ पे जो भी कुछ लाभांश बचना होता है खेती की उपज से वो लाभांश धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इस विषय को किसानों के स्तर पे दूसरे विशेषज्ञों के स्तर पे गहन अध्ययन चला कि ये विषय खेती कोई 2-4-5-10 साल करने का विषय नहीं है, कहीं न कहीं इस विषय में ऐसा एक टिकाऊपन आना चाहिए जिसमें किसान की लागत कम हो। कुछ किसान स्वयं के स्तर पे कुछ प्रिपरेशन ऐसे बनाए बॉटनिकल जिससे उनको स्वयं इस्तेमाल करके कीट और रोग का प्रबंधन कर सके
2: जी।
3: और वो खेत पे तैयार करेगा तो संभवतः उसकी लागत कम होएगी।
2: बिल्कुल।
3: लागत कम होएगी तो उसको होने वाला जो मुनाफा है जो मार्जिन है वो बेहतर होएगा। दूसरी तरफ आप जो जमीन है आप जो खेती के लिए जो मृदा है भूमि है उसकी गुणवत्ता सदैव ठीक बनी रहेगी, क्योंकि अब इस दौर में जो है ना आपकी मिट्टी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
2: बिल्कुल।
3: उसमें जो भी उपज पैदा होगी उस उपज की गुणवत्ता उसी पर निर्भर करेगी कि उस मिट्टी में गुणवत्ता कैसी है, उसमें किस तरह के आप कार्बनिक पदार्थ, किस तरह के आप जो आदान डालते हो इनपुट जिसको बोलते हो डालते हो, किस तरह की आप कीटनाशकों का प्रयोग करते हो नहीं करते हो, ये सारे विषय सारे फैक्टर जो है वो तय करते हैं कि जमीन की गुणवत्ता कैसी होगी। और जैसी जमीन की गुणवत्ता रहेगी वैसी उसमें उपज पैदा होगी, उस उपज की जो गुणवत्ता उसी पर निर्भर करेगी और वही उपज अपन सब लोगों को देर सवेर परिवार में सबको भोजन में मिलेगी। मतलब पूरी जो खाद्य श्रृंखला है वो खाद्य श्रृंखला का जो शुरुआत है वो खेती योग्य जो जमीन है उससे जुड़ा हुआ है। जमीन का सुधार करना और जमीन को टिकाऊपन बनाए रखने के लिए हमें ऐसी पद्धतियों पे काम करना है, उस पे कार्य जारी है कि जिससे किसान की लागत कम हो और वो जैविक विधि से कीट और रोग का नियंत्रण कर सके और अपनी गुणवत्तापूर्ण उपज को बाजार में अच्छी कीमतों पे और कम लागत पे पैदा की उपज जिसकी लागत उसकी कम है और एक अच्छे उचित मूल्य पे बाजार में बेच के और एक अच्छा मुनाफा कमाए, ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है।
2: जी। जब मिट्टी को स्वास्थ्य चोखो रहो जदि तो उपज चोखी होगी,
3: उपज अच्छी होगी,
2: नहीं तो मिट्टी को स्वास्थ्य बिगड़ो तो बस वह लागत बढ़ती जावली और उपज से जो एक स्तर
3: पर उसके स्वास्थ्य के साथ अपना भी स्वास्थ्य धीमे धीमे प्रभावित होगा।
2: बिल्कुल।
3: लंबे समय की अवधि में उसका खाद्य श्रृंखला का असर पूरे जो भी खाद्य श्रृंखला में जुड़े हुए जीव प्राणी हैं जो उस खाद्य श्रृंखला से पैदा होने वाली उपज को खाते हैं उन सब पे इसका असर निश्चित रूप से आना तय है। गुणवत्तापूर्ण उपज होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अच्छी उपज होनी चाहिए, कम नहीं हो और उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी तो बाजार भाव अच्छा मिले।
2: बिल्कुल।
3: ये सारे विषयों को देख के कि किसान भाई स्वयं के स्तर पे कुछ कीट नियंत्रण की विधियां अपनाएं तो उनकी उपज में लगने वाले कीट हैं वो नियंत्रित रहेंगे।
2: तो सर जी आज के समय में आपा देखा चाहे भाई फसला में जो जैविक विधि से कीट नियंत्रण छे उनकी पद्धतियां छे तो उनका बारे में किसान भाई ने थोड़ा विस्तार से बताओ।
3: किसान भाइयों उसका 3 स्तर पे जैविक खेती में आपका कीट नियंत्रण का कार्यक्रम होता है। 3 पद्धतियां मुख्य रूप से। पहली पद्धति है जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रोकथाम। रोकथाम मतलब जब आप फसल लगा रहे हो तो उस अवस्था में आपको तय करना होता है। उसमें एक पहला बिंदु आता है कि जो भी फसल आप उस अपने खेत में लगा रहे हो वो कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधक होने चाहिए स्थानीय।
2: जी।
3: वहां की आपकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कीट और रोग प्रतिरोधक किस्म का ही चयन करें।

0: है, दूसरा किसान भाई हर बार एक ही तरह की फसल एक ही जमीन पे नहीं ले, जैसे जिस प्लॉट पे आप गेहूं ले रहे हो, जिस फील्ड पे आप गेहूं ले रहे हो, अगली बार उस पर गेहूं ना ले, आप एक तरह का फसल चक्र अपनाते रहें। जैसे आपने जहां अभी गवार लिया है वहां पे आप गेहूं ले लें, ऐसे आप रोटेशन रखें, एक बार दलहनी फसल, उसके बाद एक बार नॉन दलहनी, ऐसे फसलों का एक फसल चक्र बनाए रखें। उससे क्या रहेगा, जो फसल आप एक ही फसल हर बारी लोगे तो उस फसल पे जो लगने वाले कीट और रोग हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, वो आपकी फसल को ज्यादा प्रभावित करेंगे। ठीक है, तीसरा विधि है, एक होता है आपका इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप क्या होता है कि जैसे आपका एक एकड़ खेत है तो उसमें से आपने आधे एरिया में का लगा दिया, उसके बगल में आधे एरिया में सोयाबीन लगा दिया। इंटरक्रॉप होने से भी आपके खेत में पेस्ट की तादाद कम होगी। एक और होता है, इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप बेसिकली नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैसे आपने चोला या मूंग लगाया और उसके चारों तरफ आपने तीन तीन चार चार लाइन जो है आपने गेंदे के फूल की लगा दी। गेंदे का फूल लगा दिया तो गेंदा जो है आपको मूंग में लगने वाले जो भी सकिंग इंसेक्ट हैं, जो एक मक्खी है या जो वो आपका फ्रूट बोरर है जिसको फल छेदक बोलते हैं, इनको वो जो गेंदा लगा है वो गेंदा इनको प्रभावित करता है, इनकी संख्या कम करता है उसका, उस गेंदे की फसल की होने की वजह से उनका प्रकोप कम रहेगा। ठीक है, दूसरी पद्धति है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल और मैकेनिकल, यानी यांत्रिक, भौतिक और यांत्रिक विधियां। उसमें क्या होता है, किसान भाई जैसे अब भी पिछले दिनों रबी की फसल का कटाई होने के बाद खेत खाली हो जाते हैं, तो किसान भाई जैसे खेत खाली है उसके तुरंत बाद खेत की गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। हालांकि अधिकांश किसान भाई कर रहे हैं, और भी निश्चित रूप से जैसे आपका खेत खाली हो आप उस खेत की गहरी जुताई करके उसको खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने से क्या रहेगा, वो जो जमीन के अंदर कोई कीटजनक कोई जो सूक्ष्म जीव है जो सब बाहर आ जाएंगे, सूर्य की जो तपन में किरणें पड़ेंगी तो उसमें कीट और रोग के जो सूक्ष्म जीव है वो खत्म हो जाएंगे। तो एक सप्ताह उपचार हुआ ना, उनके अंडे होंगे, उनके जो भी सूक्ष्म जीव होंगे वो जीव डूबने आने से। दूसरी पद्धति एक मल्चिंग। मल्चिंग आमतौर पर क्या होता है, जैसे आपने एक एकड़ में फसल लगाई है और उस फसल के आसपास कुछ खाली एरिया पड़ा है, वो खाली एरिया जो है वो आपकी फसल के लिए कीट पैदा करने का काम करता है। तो उस खाली एरिया में जो भी आसपास पड़ा है वहां पे आप मल्च मतलब एक परत बना दी, जैसे आपने सूखे पत्ते डाल दिए, आपने कुछ पेड़ों की घास डाल दिया, कुछ उस तरह के पुआल आता है वो डाल दिया, फसल के अवशेष डाल दिया या कंपोस्ट डाल दिया। ये मल्च काम दो तरह के काम करता है, एक तो क्या होगा उस मल्च के नीचे सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंचने से खरपतवार, सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगी तो खरपतवार का जो है कम होगा, वो खरपतवार आपकी फसल में लगने वाले कीटों को आश्रय देता है। इनडायरेक्ट रूप से वो खरपतवार पे कीट रहेगा, हाँ। और कीट उस पे आश्रित रहेंगे जो आपकी फसल को नुकसान करेंगे, तो खरपतवार को आश्रय देता है, तो आसपास आप मल्च कर दोगे तो वो नहीं होगा। दूसरा, उस मल्च के करने से एक बड़ा होता है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जमीन पर अंडे देते हैं, तो खरपतवार जो मल्च रहेगा तो उनपे जमीन पर अंडे देने की जो है वो संभावनाएं कम होंगी, तो आपका प्रकोप कम रहेगा। अब आते हैं तीसरे विषय पे। तीसरा विषय कि किसान भाई ये तो हो गया प्रिवेंटिव मतलब आपको रोकथाम के लिए,
1: हाँ।
0: अब चूंकि अभी वर्तमान की बात करें तो अब फसल खड़ी है, किसी के मूंग खड़ा है, मोट की फसल तैयार है, चल रही है, उसमें कुछ फल छेदक कीट लग रहा है, कहीं कहीं कुछ सकिंग इंसेक्ट जिसको एफिड बोलते हैं वो लगे हैं, तो उनका नियंत्रण कैसे करें। फसल तो वही हो गई, अब तो फसल एकदम अच्छी स्थिति में, तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को एक दो चीजें ऐसी बताता हूँ अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। पहली एक विधि बता रहा हूँ, अच्छे से आराम नोट कर ले किसान भाई, एक ऐसा भगोना ले जिसमें कि लगभग 20 लीटर गोमूत्र आ जाए और उसमें 3 किलोग्राम नीम की पत्तियों को लेके थोड़ा क्रश करके उसमें डाल दें, 3 किलो आक जो आंकड़ा बोलते हैं उसको,
1: हाँ।
0: आक की पत्तियां और 3 किलोग्राम आसपास जो भी जैसे सीताफल मिल जाए किसी एरिया में तो सीताफल की पत्तियां, और फिर 300 ग्राम उनको हरी या लाल मिर्ची जो तीखी आती है, बहुत हाईली पंजेंट होती है ना, जिसमें तीखापन ज्यादा हो, वो मिर्ची को क्रश करके उसमें डाल देना है। ये सारा जो मटेरियल है इस मटेरियल को उस भगोने में आप उबालो अच्छा खासा, और उबालने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, ठंडा करके इस घोल को छान लो और छानने के बाद इस घोल से आप अपने अलग किसी कंटेनर में एक एक लीटर की बोतल भर के इसको रख लो। ये जो बना है कीटनाशक, ये कीटनाशक 2-4-6 महीने खराब नहीं होगा, गोमूत्र का जो कीटनाशक है आप इसको 6 महीने तक भी इस्तेमाल करोगे तो कोई खराब नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, सायंकाल में आप 1 लीटर इस घोल को 20 लीटर पानी में मिला लीजिए, 1:20, 20 लीटर पानी में मिला लिया, और सायंकाल जैसे आपकी मूंग की फसल है या आपकी चोला की फसल है जिसमें आपको लगता है कि फल से पे कीट लगा हुआ है, सायंकाल उसमें आप छिड़काव कर दीजिए, आप देखेंगे इसके बहुत

0: अच्छे परिणाम आपको शीघ्र ही मिलेंगे। जितना लग गया कीट उतना लगे आगे उसकी संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से किसान भाई एक समन्वित प्रयास करके अपने खेत पे जो जो फसल है उसको अच्छी तरह से बचा सकते हैं और उस पर कीट नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं।
1: थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूंगा भाई, नीम आधारित जैविक कीटनाशकों को कीट नियंत्रण में कायम है।
0: नीम जैविक विधि में कीटनाशक में एक मुख्य पेड़ है। आपने निम्बोली का नाम सुना होगा, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट।
1: जी,
0: निम्बोली को थोड़ा क्रश करना, क्रश आप किसी भी बर्तन में उसको क्रश कर लीजिए और क्रश करके उसका जो है एक सॉल्यूशन बना लीजिए और उसको आप लगभग 3 से 4 दिन उसमें छोड़ दीजिए किसी बर्तन में, चाहे मटका हो या कहीं दूसरा आपके पास कोई बर्तन हो, और उसको 3-4 दिन बाद जो उसके अंदर घोल बना है उस घोल को एक साफ सुथरे कपड़े से छान लो और छानने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को 1:2 यानी 1:1 में 100 ml आप बोलेंगे तो उसका 20 गुना
1: जी।
0: 1 लीटर को 20 लीटर में घोल के इसका आप किसी भी फसल पे छिड़काव करेंगे तो इसका एक रिपेलेंट इफेक्ट होता है। रिपेलेंट का मतलब होता है जो कीट उस फसल के नजदीक आ रहा होता है ना, इसी नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जो निमूली का जो आपने रस निकाला है उसकी वजह से उस कीट फसल के आसपास नहीं आएगा, उसको रिपेलेंट इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा आता है एक एंटीफिडेंट, मतलब वो कीट चाहकर भी उस फसल के ऊपर उसको फीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रतिकर्षण बनता है। ये नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का काम होता है। एक तो इसका महत्वपूर्ण काम ये हो गया, दूसरा इसकी पत्तियों का जैसे बताया था, ये जो आपको बोटनिकल प्रिपरेशन बनाने की जो विधि बताई थी किसान भाई अपने खेत में, ऐसा ही मैं एक आपको दूसरा उपाय भी बताता हूँ। किसान भाई एक 10 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें और 10 लीटर गौमूत्र ले लें और उसमें आपको 1 किलोग्राम जो है गुड़, देसी गुड़ जो भी हो वो गुड़ ले लें। ये सामग्री बता रहा हूँ फिर इसको प्रयोग कैसे करना है। और 1 किलो कोई भी दाल हो, चना, मूंग, मोठ, उस दाल का आटा यानी बेसन, ठीक है जी, और आपको उसके बाद 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी में सारे को घोल दें और उसको एक ड्रम में डाल दें। वो ड्रम में दिन में एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दें, वो ड्रम 6 से 7 दिन तक छायादार स्थान में रखा रहने, इसको बंद कर दें, दिन में एक बार अच्छे से मिला दें और फिर उस घोल को कपड़े से छान के और जो घोल आ रहा है उस घोल को 1:20 यानी 1 लीटर घोल को 20 लीटर पानी में करके, और आप अगर कोई किसान भाई जैसे ड्रिप लगा रखा है सब्जी कर रहा है तो उस ड्रिप के साथ इसको प्रयोग कर ले तो उसकी जमीन की उर्वरता अच्छी रहेगी, कीट प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और कीटों का प्रकोप भी कम होगा।
1: श्रोता, आज अपने कार्यक्रम में पधारे छे कमलेश जांगिड़ जी, आप भंडार प्रबंधक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में पदस्थापित छे और आपने जानकारी दे रहे छे जैविक विधि से फसलों में कीट नियंत्रण का बारे में। आपने किसान भाई ने ज्यादा से ज्यादा जैविक विधि अपनानी चाहिए जिससे कि मिट्टी को स्वास्थ्य चोखू हो गए। आगे आपसे जानबो चावला भाई, परभक्षी और परजीवी कीटा की सहायता से कीट नियंत्रण करो जा सके छे?
0: जहाँ खेती पैदा करते हो उसको पारिस्थिति की जो है उसमें सब तरह के जीव होते हैं। जो परभक्षी जीव होते हैं जो वो क्या हानिकारक कीट की खाता है
1: जी।
0: हानिकारक कीट जो आपकी फसल पे होएगा, आप कभी देखा होगा कि आपके खेत में प्लोइंग करते हैं तो प्लोइंग के दौरान पीछे पीछे कुछ पक्षी आप देखोगे ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलते रहते हैं, टिटरी हुआ है वो क्या रहते हैं, वो आपके हानिकारक कीट और जो जीव है वो कीट और जीव को एलिमिनेट करते हैं।
1: अच्छा,
0: उनको खा जाते हैं वो, तो वो प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण हुआ ना, इसलिए सदैव मिलेगा। कोई भी किसान भाई अपने खेत में अगर जुताई कर रहा है, जुताई के दौरान वो देखेगा इसके ट्रैक्टर के पीछे कुछ पक्षी उस ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलते रहते हैं। उनका क्या उद्देश्य है, आपकी जमीन से जैसे ही वो मिट्टी पलटेगी और उसके नीचे जो भी अंडे उनके कीटाणु जो भी सूक्ष्म जीव होंगे जैसे बाहर आएंगे वो जीव उनको खा जाएगा। तो वो कीट नियंत्रण की विधि हो गई ना, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है जैविक विधि से, मतलब कीट कीट को खा रहा है जी।
1: तो ये भी एक बेहतर तरीका,
0: ये भी एक बेहतर तरीका।
1: आपने कई किसान भाई जैविक विधि से फसलों में कीट नियंत्रण की तरफ बढ़ रहा है, जैविक विधि से जो खेती है उनकी तरफ भी बढ़ रहा है जिससे की फसलों की पैदावार भी चोखी हो रही है। पर अब भी कई किसान भाई ऐसा है जो रासायनिक उर्वरक है या रासायनिक तरीका से खेती करे छे, तो थोड़ा सो अंडा या जानबो चाहूंगा भाई जैविक कीट नियंत्रण और रासायनिक कीट नियंत्रण में काई अंतर है जिससे कि आपना जो किसान भाई अभी भी रासायनिक प्रक्रिया से खेती किसानी करे छे वह जैविक की तरफ बढ़े।
0: जैविक और रासायनिक, रासायनिक में मैंने अभी जैसे आपको बता रहा हूँ कि रासायनिक कीट नियंत्रण में क्या होता है, जैसे किसान भाई अपने खेत में फसल लगा दी उसको लगता है कि खरपतवार पैदा हो गया तो बाजार से पेस्टिसाइड लाएगा वो हर्बिसाइड और वो फसल पे छिड़काव कर देगा
1: जी।
0: तो वो जो खरपतवार उगने वाला है उसको जैसे उगने से पहले ही उसको उस पे उस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर देगा तो उसका उगना ही बंद हो जाएगा। जबकि वास्तव में आपके पारिस्थिति के तंत्र के लिए जो भी पौधा उग रहा है वो उस पारिस्थिति के तंत्र के लिए आवश्यक है
1: जी।
0: बायोलॉजी उसमें क्या कर रहे हो आप, जैविक विधि में आपको या तो उसका आपके पास जोत कितनी बड़ी है, खेत

0: उस खेत में या तो आप उसको हाथ से उखाड़ रहे हो खरपतवार को, ठीक है, या आप जो खाद इस्तेमाल कर रहे हो वो खाद अच्छी सड़ी गली खाद है, उस सड़ी गली खाद में जो खरपतवार का बीज है वो पहले ही विघटित हो चुका है, वो खरपतवार का बीज पहले ही खत्म हो गया है, तो अगली बार से वो खरपतवार पैदा नहीं होगा। जैसे आप मानो कि इस फसल में आपके खरपतवार आ गया, आपने उस खरपतवार को काट के एक तरह इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके आपने उसमें कंपोस्ट खाद के अंदर डाल, वो खाद जब अच्छे से सड़ेगी तो बीज उस खाद के अंदर ही सड़ जाएगा, तो अगली बार नहीं होगा। और अगर उससे ज्यादा मात्रा में है तो आपने उसको निकाल के कहीं एक तरह का खड्डा करके उस खड्डे में उस खरपतवार को अलग से जमीन में दबा दिया
1: जी।
0: तो उसको आगे फैलने से रोक दिया। तो जैविक विधि में आपको ये तक अपनानी पड़ेगी, और उधर आपको सिर्फ पेस्टिसाइड लाया, आपको एप्लीकेशन करना है, बट वो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल कर रहे हो वो उस जमीन में आने वाले सालों साल तक बना रहेगा। आप उस जमीन से जो भी उपज लोगे उस उपज में उसका रेजिडुअल इफेक्ट यानी अवशेष प्रभाव बना रहेगा, और उससे जो भी उपज पैदा होगी उस उपज में उसका प्रभाव होने से आपकी पूरी खाद्य श्रृंखला में उस पेस्टिसाइड का असर रहेगा जो गुणवत्तापूर्ण। और दूसरा इम्पोर्टेंट विषय कि आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो प्रभावित होगी, और जैसे जैसे वो कमजोर होगी अंततोगत्वा आपकी उपज भी प्रभावित होगी और उसकी उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।
1: यानी कि कोई भी तरीका से या आपने लाभदायक चाहिए होगा
0: किसान भाई को, धीमे धीमे आज उसने रासायनिक से कर रहा है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच ले सकता है कि उसकी मात्रा कम करे, कुछ जैविक विधि अपनाए, कुछ समय के बाद उसकी जमीन इतनी अच्छी मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा कि वो खुद कुछ सक्षम होएगी कि उसमें जो पैदा होने वाला पौधा जो फसल है वो मजबूत स्थिति में होए। और कुछ किसान भाई अपने खेत पे इस तरह की बॉटनिकल प्रिपरेशन जैविक प्रिपरेशन तैयार करके उसका इस्तेमाल करें, उससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसान की लागत कम रहेगी, उपज की गुणवत्ता बढ़िया रहेगी और किसान को होने वाला लाभ अच्छा होगा
1: जी।
0: ये सारे प्रक्रिया का यही पूरा मूल जो है वो ये है।
1: तो चलता चलता कमलेश जी आपका ही संदेश आप किसान भाई ने देबो चावला,
0: किसान भाइयों से एक मेरा अनुरोध है कि वो अपने खेती के लिए जो मिट्टी है, जो मृदा है जिसपे अपन उपज पैदा करते हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दें
1: जी।
0: अब आने वाले समय में इसकी की मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके खेत में पैदा होने वाले उपज की गुणवत्ता को लेकर, और जो गुणवत्ता युक्त उपज बाजार में जा रही है उसको लेकर। वो मृदा ही एक मूल स्रोत है जहां से गुणवत्ता युक्त पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी फसल, जो भी उपज, जो भी सब्जी, जो भी फल पैदा होगा वो उस जमीन से पैदा होगा। इसीलिए उस मृदा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु निरंतर प्रयास करें, समन्वित प्रयास करें, और अपने खेत पे जो भी आपके पास पद्धतियां हैं जैसे कंपोस्ट बनाने की है, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट बनाने की है, अन्य तकनीकी आपकी विधि है जिनसे आप अपने खेत पे पैदा होने वाले जो फसल है उन फसलों को जैविक तरीके से खेती कर सकें और एक गुणवत्तापूर्ण उपज पैदा कर सकें, और साथ ही साथ खेती के टिकाऊपन को
1: जी।
0: खेती को 2-5-10 साल का काम नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है
1: जी।
0: तो खेती के टिकाऊपन को बनाने की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर हुए, ये मेरा उनसे अनुरोध है।
1: जब मिट्टी को स्वास्थ्य सही रवलो जदी तो फसल चौकी हवेली और पीढ़ी दर पीढ़ी चौकी फसल रखुद भी पावला, जिसे कि सारो जो चक्र चे वो सही तरीका से सुधर पावलो। जैविक विधि से फसला में कीट नियंत्रण का बारे में जानकारी दिया कमलेश जांगीर, आप भंडार प्रबंधक राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर में पदस्थापित है। आप कार्यक्रम में पधारा और इतनी चौकी तरीका से किसान भाई ने जानकारी दिया, इसके लिए आपको घनो घनो धन्यवाद। राम राम सर।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: तो चौकी जानकारी और जानकारी जदि फले है जदि सुन बालो सुने भी और गुणे भी।
6: बिल्कुल, जानकारी की जरूरत है कि देखो नवाचार को युग है, समय बदल रहे हैं, हर चीज तकनीक भी बदल रही है, तो किसान भी देखो नई नई चीजें

0: पर आ रही।
1: बिल्कुल, और समझदार आदमी वही है महेश भाई कि जो समय का परिवर्तन के साथ खुद में सकारात्मक परिवर्तन करे।
0: बिल्कुल,
1: है ना, कि अब मोबाइल को जमानो है तो आप 24 घंटा मोबाइल ही देख रहे हैं, यो तो कोई परिवर्तन को नहीं। लेकिन अगर आप मोबाइल में 2 घंटा 3 घंटा क्यों देख रहे हैं, काम की चीज, ज्ञान की चीज देख रहे हैं, तो वो परिवर्तन है।
0: बिल्कुल भी, मोबाइल देखो किसान के लिए भी, मंडी का भाव भी देख सके है, और जहां किसान संगठन हो बस कोई जानकारी साझा कर सके है।
1: आजकल तो मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कर आप सिंचाई को, जो आप समय है बूंद बूंद सिंचाई को या स्प्रिंकलर को, बिना भी निश्चित कर सको हो, और बस आप ऑटो पे लगा दो, बिना अपने आप ही सिंचाई कर दे।
0: बिल्कुल, खेती के मायने देखो ड्रोन आ गए हैं और नए नए तरीका आ रखे हैं, और खेती में बहुत सी चीजें की नई नई प्रकार की फसलें बने उगाने का तरीका है। जी, की देखो पोली हाउस आई
1: जी,
0: तो किसान देखो समय के साथ साथ पारंपरिक खेती ने छोड़ के और नई तकनीक ने अपनाओगे नई प्रकार की खेती में जदी आप आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल, और आगे तो देखो कहवे है ना कि समय को जो चक्र है वो चालतो रहे और इंसान ने आगे बढ़ना ही चाहिए। जो यहाँ आवार किसान वाणी की आप बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रही, लेकिन घड़ी जो है निरंतर चाल रही है और आपा ने भी आगे बढ़वा की बात कह रही है।
0: तो घड़ी कहीं कह रही है बार?
1: कि चालो तो दो आ गया चंचल,
0: और महेश भाई ने
1: और करा आपा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं, एफएम इंडेक्स 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम रिबाट उड़ीकता सगला काश्तकार भाया ने बैणा ने और साथिया ने चंचलो ने भरियो हरियो भरियो मीठो मीठो सो राम राम और सगला बड़ा बूढ़ा ने एक बार ओ जू ठोकर अजय सा और महेश भाई आपने भी एक बार ओ जू राम राम सा।
3: राम राम चंचल जी आपने और जो अपना काश्तकार भाई लोग बैठे हैं चौपाल कमाए कार्यक्रम सुन रहे हैं बने भी घनी घनी राम राम।

0: आज महेश भाई आप देखा अपना ऑफिस में जो जो गड्ढा भर रहा है पानी का वहां पर सब पे माटी पटक रहा है और बूर रहा है बाने।
1: बिल्कुल देखो अवार बरसात को समय है, चौमासा को टेम है, तो जगह खाडा खोच रही वहां कमाए एक तो पानी भर जाए, चाहे अपने गांव कमाए गुआड़ी गेला कठे की भी बात हुए तो पानी भर रहे। तो कोई आदमी जो को बारह को ऐड हुआ है चाहे गाड़ी से आ रहे तो बिन बिरो को नहीं हो और कई बार वो भी कमाई गिर भी जाए। और आपने घर की अगर बात कर लिया तो छात के ऊपर या कठे बालकनी में कठे नीचे डका टायर पड़े ही पुराना या कोई
0: घड़ा
1: जगह हाँ। आप सीधो पड़े भी कमाए पानी भर रहे है कठे पानी इकट्ठे हो रहे तो भी कमाए के एक बार मच्छर जगह पनप जाए।
0: बिल्कुल, और जो मच्छर पनप गया तो फिर कई तरीका की बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ऐ भात भात की बीमारियां हो जावे। एक अलावा मक्खियां भी तो होवे और वे मक्खियां भी गंदा पानी परसू उड़े है और साफ जगह पे जार बैठे है। अब वो पानी को ग्लास भी बह सके है, कोई पीवा का पानी को बर्तन भी हो सके है और जब वो थाका पेट में जाओ लो भी के माध्यम सु पानी तो भी पानी के साथ जाओ लो वो कीटाणु जो भी माखी सु फैलियो है और फिर पेट संबंधी कई तरीका की बीमारियां, उल्टी है, दस्त है, पेट दर्द है, डिहाइड्रेशन है यानी पानी की कमी है, कई तरीका की समस्या हो जावे जो कि बरसात का मौसम में बहुत ज्यादा देखभाल में मिले है।
1: बिल्कुल, पाचन खराब हो जाए जगह और पेट की समस्या जगह साफ सफाई न रखवास हूँ और मक्खियां से तो कई प्रकार के रोग हो जाए अभी दूषित भोजन है तो ध्यान ये रखना जरूरी है क्योंकि मच्छर जनित कई रोग हैं जगह डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो बरसात का माए घास पात की इकट्ठी हो रही है बिने भी अवार काट के और साफ सुथरा कर देना चाहिए।
0: और दूसरी जी की बात है जठे भी पानी को भराव आपने देखे बिल्कुल निस्तारण करना है। घर में भी अब कूलर को भी यहाँ देखा बरसात हो रही है तो ठंडक सी महसूस हो है तो आप अब बिना पानी के कूलर चलावा और पानी जो है कूलर में भरोड़ो है। अब जो भरोड़ो पानी अभी में तो मच्छर माखी पनपेला तो बाने भी खाली कर दिया पहुंच दिया। और ध्यान रखा न सिर्फ अपने घर में बल्कि आसपास में भी पानी एक तो न वे गंदगी एकटी नहीं हो वे क्योंकि कई तरीके का जहरीला जो जानवर है वे भी जो है कचरा में घास फूस में आग लुक जावे और कई बार हादसा हो जावे साहब।
1: हाँ, बड़ी जगह जंगली घास घर के आसपास में जगह इकट्ठी हो रही है तो ये मौसम में घास पात की चौकी को नहीं क्योंकि जहरीला जगह रेंग वाला जीव जंतु ही वह कमाए रहे और अचानक से निकल जाए रात विरात कोई तो ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई को कि ये प्रकार की जो खरपतवार है घास पात है इन्हें काट के अलग कर दे वहाँ पर।
0: बिल्कुल, और अब आपा थोड़ो सो अलग एक काम करा कि बाता चीता तो हो ही रही है गीत संगीत की तरफ चला
1: एक चौको सो लोगी सुन से पहले एक छोटो सो विराम ले लेवा।
0: बिल्कुल साहब,
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: आप है तो बिजलियां चमक ही है और चमक भी रही है, और सूरज जो है लाल सूरज पूरब में उगेलो, अपना देश में उगेलो, और ओ जो सूरज हो तरक्की को उगेलो, ऐसी आपका कामना करा साहब।
3: बहुत ही चोको लोकगीत आप सुनाया और सूरज बिल्कुल चमके भी, देखो आपनो कार्यक्रम है।
2: और अपना कार्यक्रम में आप चावा काश्तकार के भाग्य को सूरज भी उदय रहे, हमेशा चमकतो रहे, और एक लिए बहुत जरूरी है कि बाने जानकारियां मिलती रहे।
3: तो आपने देखा किसान और पशुपालक भाई ही बाने आज बहुत चौकी सी जानकारी दिलासिया। दूध उत्पादन बढ़ावा की आधुनिक तकनीक,
2: बिल्कुल
3: तो
2: बिल्कुल
3: अंकित सेठी जानकारी देसी।
2: तो फिर सुना जानकारी।
4: राम राम कसा भाई बना, आज का विशेष कार्यक्रम में आपको स्वागत है। देखो आज आपने बीच बताया है जानकारी देवा के लिए डॉक्टर अंकित कुमार शेट्टी, पशु चिकित्सा अधिकारी दनावर दोसा सु। आज को आपने जो है वो दूध उत्पादन बढ़ावा का आधुनिक तरीका एक बारे में डॉक्टर साहब से जानकारी लेवा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को करा स्वागत। राम राम साहब।
5: राम राम जी।
4: तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि अपना जो पशु है वहां को आप दूध उत्पादन की प्रकारों उन तरीकों बढ़ा और ज्यादा मुनाफा कमा सका।
5: तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा अपन आधुनिक तरीके से अगर दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले तो उसकी ब्रीडिंग पे ध्यान देंगे, नस्ल सुधार पे ध्यान देंगे। यदि उसका नस्ल सुधार अच्छा है तो जानवर है वो अच्छा दूध देगा। उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। यदि जानवरों का रखरखाव अच्छा होगा तो जानवर अत्यधिक दूध देगा। एक हम फिर उस पे उसकी बीमारियों का ध्यान रखेंगे। यदि जानवर हमारा स्वस्थ रहेगा तो वह अधिक दूध उत्पादन कर सकता है। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो डेयरी फार्मिंग है, अपन घर पे गाय बह सकते हैं तो अच्छा दूध ले पाएंगे।
4: दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने को खान पीन के जो ध्यान रखने की बातें हैं वो बताओ सर।
5: हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।

0: कि हमें खान पीन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हम जानवर को खाना देंगे, हम वैसा ही जानवर से हम दूध ले सकते हैं। अगर जानवर का पेट नहीं भरेगा तो हम उससे अधिक दूध लेने की अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो भी अपना गाय है या भैंस है, उसको कम से कम 20 से 25 किलो रोजाना हरा चारा खिलाना चाहिए, सूखा चारा खिलाना चाहिए। और 1 किलो दूध पे गाय को 400 ग्राम और भैंस को 500 ग्राम कंसंट्रेट डाइट बोलते हैं उसको, उसको खल कांकड़े आप बोल सकते हो, आप उनको वो खिलाना चाहिए और अपने उनको मिनरल मिक्सर देना चाहिए। अगर आप यदि नहीं दोगे तो जानवर का दूध घट जाएगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और आजकल यदि आपको हरा चारा नहीं मिल रहा है तो आप साइलेज बना के भी आप गाय या भैंस को हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं।
1: नस्ल सुधार से दूध उत्पादन आप कितो बढ़ा सका और के प्रकार बढ़ा सका, एक जानकारी बताओ।
0: जरूर, नस्ल सुधार एक डेयरी फार्मिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नस्ल सुधार के लिए हम सबसे अच्छी टेक्निक है AI, AI के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसको हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। उसके द्वारा हम गाय भैंस का नस्ल सुधार कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक टेक्निक सेक्स ऑर्टेड सीमन को मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्स ऑर्टेड सीमन वो होता है जिससे हम यदि जानवर को AI करवाते हैं तो बछड़ी ही पैदा होती है, उससे बछड़ियां ज्यादा होंगी और वो बड़ी आगे जाके गाय बनेंगी, तो हम सेक्स ऑर्टेड सीमन का ही यूज करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया जानकारी थे बताया। देखो मौसम है के अनुसार भी देखो दूध उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़े, तो मौसम के अनुसार आप दूध उत्पादन बढ़ावा पर बातों को ध्यान दे सका था, बहुत अच्छी जानकारी।
0: गाय भैंसों का मौसम है उस पर डिपेंड करते हैं। जो गाय भैंस होती है उसको 10 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर तक सुटेबल कंडीशन देती है। यदि 10 डिग्री से डाउन जाएगा तो जानवर कोल्ड स्ट्रेस में आ जाएगा, और यदि 30 से ऊपर चला जाएगा तो हीट स्ट्रेस में आ जाएगा। अब यदि गर्मी ज्यादा है तो जानवर हाँपता है तो उसका जो लार होती है वो बाहर निकल जाती है, और लार जब बाहर निकल जाती है उसका सलाइवेशन ठीक से नहीं हो पाता है तो उसका पेट संबंधित बीमारियां हो जाती है। ऐसे ठंडों के दिनों में यदि गाय भैंस को यदि ठंड लग रही है और उसके यदि बिछावन यदि गीली है तो उसको ठंड लग जाती है, उससे उसको निमोनिया हो जाता है या काफी और गंभीर समस्या हो जाती है। तो ये दोनों उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती है। यदि उनका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो जानवर दूध नहीं दे पाएगा। अब इसके हम समाधान में अपन क्या क्या कर सकते हैं। यदि आप गर्मी के दिनों में डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो उसको छांव में रखें, ठंडा पानी पिलाएं, 24 घंटे पानी की अवेलेबिलिटी हो, स्प्रिंकलर कूलर लगाएं, और सर्दी के दिनों में हम उसको इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, उसके नीचे कुछ बिछावन कर दें, ठंडी हवाओं से उसको बचाव करें, और उसको थोड़ा हमेशा जब भी है तो गर्म पानी, जहां तक पॉसिबल हो गर्म पानी उसको पिलाएं। इससे वो ज्यादा पानी पिएगा तो अत्यधिक दूध देगा, क्योंकि 1 लीटर दूध बनने के लिए लगभग 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
1: देखो डॉक्टर साहब, एक जानकारी पूछना चाह रहे हो कि देखो दूध उत्पादन बड़ा भाग मायने का दुबा की तकनीक है, यानी तरीको है, देखो भी दूध उत्पादन में प्रभाव पड़ेगी।
0: हाँ बिल्कुल, दूध निकालने में दूध दोहन तकनीक का काफी असर पड़ता है। हम डेयरी फार्मिंग में दूध निकालते हैं तो हाथ धोकर दूध निकालना चाहिए, और तय समय पे ही सुबह शाम दूध निकालना चाहिए। अब जब हम हाथ से दूध निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम नकलिंग बोलते हैं। नकलिंग का मतलब होता है कि जब हम अंगूठा लगा के और जब अंगूठी मार के और ऐसे जब दूध निकालते हैं तो उसके जो थन होते हैं उसमें थन में चोट लगने की संभावना रहती है, तो चोट निश्चित लगती है उसको आप मेस्टाइटिस थनेला बीमारी अपन उसको बोलते हैं। इससे जानवर के दूध में छीछड़े आ जाते हैं, फटा फटा हुआ दूध निकलता है उसके, तो उस बीमारी कई बार दूध धोने की वजह से ही आती है। तो भी हम यदि मशीन से दूध धोएं काफी अच्छा रहेगा, या फिर एक दूध निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त धोवन विधि। इससे जानवर का कंप्लीट दूध निकल जाता है, थन में इंजुरी होने की संभावना भी काफी कम रहती है। यदि फिर भी यदि हम मशीन से धोवन करें तो वो सही रहेगा और उससे थनेला बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाते
1: हैं। देखो बीमारियों से भी दूध कम है पशुपालन में, तो बताओ डॉक्टर साहब की जो बीमारियां है बल्कि प्रकारों अधिक जो दूध है अपने पशु को दिन क्या के प्रकार कम कर दे।
0: हाँ बिल्कुल, बीमारी से भी दूध कम होता है और बहुत अधिक मात्रा में दूध कम हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी तो होती है मैस्टाइटिस, जिसको अपन थन की सूजन बोलते हैं, थन पे लाल लाल हो जाना, और इससे दूध खराब आता है। इसके बाद आता है खुरपका मुंहपका बीमारी, जिसमें जानवर जीभ पे छाले हो जाते हैं और जानवर कुछ खा नहीं पाता है। गलघोंटू बीमारियों से भी दूध घटने के काफी चांस हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जिनसे दूध घट सकते हैं, तो हम इनका एक ही निराकरण है, एक तो अपन समय पर उसका टीकाकरण करवाएं। नियमित समय पर पेट के कीड़े मारने की अपन दवाई देनी चाहिए। जो भी पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं तो बदल बदल के साल्ट हमेशा अपन को यूज करना चाहिए। इसके लिए आप पास में कोई पशु चिकित्सालय हो तो वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं।
1: और देखो अपना किसान भाई देखो दूध उत्पादन तो कर रहे हैं और भी के साथ में वो खुद को आधुनिक डेयरी फार्म बनाना चाह रहे, तो वह कौन कौन सी

0: आवश्यकताओं को ध्यान रखें, एक ही जानकारी थे बताओ।
1: आधुनिकता में आजकल खेती में पशुपालन में बहुत आगे आ गया है, तो यदि हम आधुनिक तरीके से डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप से पशु की दवा का ध्यान रख सकते हैं, टीकाकरण का ध्यान रख सकते हैं, खुराक और रिकॉर्ड भी हम ध्यान रख सकते हैं। आजकल जानवरों के यहाँ सेंसर बड़ी वजह डेयरी फार्मिंग है, उन पे जानवरों के सेंसर लगे हुए हैं, उनसे जानवरों की अपनी फिजियोलॉजी कंडीशन भी पता लग सकती है, जैसे जानवर अपना कब हीट में आया है और क्या दिक्कतें हो रही है, या हीट डिडक्शन का पता लगाना।
0: देखो रोक साहब, किसान भाई दूध उत्पादन तो कर रहा है और वे आपका जो फार्म बड़ा आधुनिक डेयरी फार्म बनाना चाह रहा है, तो इसके लिए बन कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखनी चाहिए?
1: जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, खेती के साथ साथ पशुपालन भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है। इसमें मोबाइल ऐप से आप पशु की दवा, टीकाकरण एवं खुराक का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। टैग के माध्यम से हर गाय या भैंस की अपन अलग से पहचान की जा सकती है। सेंसर होता है, उसे मशीन में दूध की मात्रा, पशु का हीट डिटेक्शन, पशु का टेम्परेचर, बहुत सारी चीजों की अपन जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जानवर को कोई तकलीफ का सामना नहीं उठाना। पशुशाला हवादार एवं साफ सुथरी बनाए, पानी एवं भरे चारे की व्यवस्था करना चाहिए, और जो भी अपना दूध लेते हैं उसको सहकारी समितियों से, या आजकल महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी आ गई है, जैसे राजस्थान के अंदर आशा महिला है, पायस है, सखी है, आप इनके द्वारा भी दूध की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं, और मशीनों का इस्तेमाल करके और दूध दोहने की तकनीकी या चाय काटिंग मशीनों से आप TMR बनाने में आसानी रहेगी आपको, और यदि इन तकनीकी आप अपनाओगे तो आपका दूध उत्पादन में मुनाफा भी कई गुना आपका बढ़ेगा।
0: मैं आपसे पूछ पूछा रहा हूँ कि अपना जो आधुनिक दूध उत्पादन का जो तरीका है, बन अपना जो पशु नस्ल है बिल्कुल कितना महत्व है, और अपना जो पशु नस्ल के अनुसार ही अपना जो खाना दाना है या अपना पशु को जो भोजन है देखो कितना महत्व, की जानकारी बताओ।
1: कृत्रिम गर्भाधान है, उसका डेयरी फार्मिंग में बहुत ज्यादा प्रभाव है। यदि हम अच्छी नस्ल की संतति पैदा करेंगे तो जानवर अत्यधिक दूध देगा और बीमारियों से भी ग्रसित नहीं होगा, और एक जीन डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम रहती है, आनुवंशिक विकार वाली, वो दिक्कतें भी यदि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाओगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। अब बात आती है साहब, हमने अच्छा सीमन रखवा लिया, अच्छी बछड़ी आ गई, अब इसका क्या डाइट करें, कैसे क्या खिलाएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार अपने घर में जब बच्चा होता है अपन उसको 6 महीने रोटी नहीं देते हैं, अपने किसान भाइयों की सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आती है कि यदि बच्चा पैदा होता है उसको स्टार्टिंग में तूड़ा खिलाना चालू कर देते हैं। यदि आप जानवर को स्टार्टिंग में ही तूड़ा खिलाना चालू करोगे तो उसका पेट लटक जाएगा, जानवर के बच्चे को भी 6 महीने तक उसको तूड़े की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हरा चारा उसको खिलाना चाहिए। उसके बाद आता है कि भाई जब बड़ा हो गया तो उसको क्या, हम किस हिसाब से हम उसके डाइट मैनेज करें, उसका कैसे रख रखाव करें, तो ज्यादातर किसान भाई के सामने दिक्कतें आती है, सब हमने डेयरी फार्मिंग कर ली पर हमारे जानवर रिपीट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम, किसी के गाय 10 लीटर दूध देती है, किसी की गाय 20 लीटर दूध देती है, किसी की गाय 30 लीटर दूध देती है, तो जो हमारे किसान भाई होते हैं वो ज्यादातर 10 लीटर वाली को भी वे डाइट प्लान करते हैं और 30 लीटर वाली को भी वे डाइट प्लान करते हैं, जबकि एक गाय तो 10 लीटर दूध दे रही है जबकि दूसरी गाय 30 लीटर दूध दे रही है, उसके दूध में और उसके दूध में डिफरेंस 2 गुना हो रहा है, पर हम उसको 2 गुना डाइट नहीं दे पाते हैं। यदि हम उसको 2 गुना डाइट नहीं दे पाते हैं तो जानवर का धीरे धीरे धीरे दूध डाउन हो जाता है या फिर वो जानवर रिपीट हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि भाई डेयरी फार्मिंग के साथ साथ डाइट का भी काफी रोल है, इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम डेयरी फार्मिंग को काफी अच्छे से चला सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया से जानकारी बताया, और इसके साथ ही देखो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपना आधुनिक दूध उत्पादन का जो तरीका है, और कौन कौन सी बातों को किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए?
1: मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूंगा कि आधुनिक तरीके में यही है कि हम एक तो AI पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, एक हम उसको खान पीन का उसके दूध के हिसाब से उसका खान पीन सेट करें, या तो आप किसी डॉक्टर से परामर्श लेके बना सकते हो डाइट प्लान, या आजकल मार्केट में कई कंपनियां अपने पैलेट्स प्रोवाइड कराती हैं, आप उस तरह से खिला सकते हो। ट्रांजिशन फेज में ब्याने से पहले जानवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसका 60 दिन पहले दूध छोड़ देना चाहिए, जिससे अगले ब्याज पे उसका 20-25% दूध उसका बढ़े। एक जानवर को जो डेयरी फार्म में उसे TMR बना के खिलाओ, उसको टोटल मिक्स राशन बोलते हैं, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जानवर बीमार ना हो इसके लिए आप सेंसर का उपयोग कर सकते हैं, टीकाकरण आप उसका टीकाकरण कराओ नियमित रूप से, इन चीजों का आप ध्यान रखो। सर्दी के दिनों में ठंडी हवा ना आए हमें अपने डेयरी फार्मिंग में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
0: आज आपने बीज पधारिया डॉक्टर अंकित कुमार जी सेठी पशु चिकित्सा अधिकारी धनावर दोसा सो और आपने जानकारी दिया दूध उत्पादन बढ़ावा का आधुनिक तरीका के बारे में। धन्यवाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई

0: बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईडीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो राजू भाई वो चुकी जानकारी दे रहा और किसान भाई सुने जानकारी
3: बिल्कुल और सुने ला तो गुण भी ला और धन्यवाद राजू भाई तो दिया ही है
2: और डॉक्टर अंकित सेठी जो जानकारी दिया अपना विशेषज्ञ तो दोनों ने धन्यवाद भी दे देवा और भाई लगा को थोड़ा मनोरंजन भी कर देवा।
3: बिल्कुल डिग्गी को खूब मेड़ो चल रहे है, पद यात्रा चल रही है, लोग जा रहा है नंगा पैर और बाबा ने ढोक रहा है तो सारी बात तो ठीक है। महेश भाई जो डीजे को कल्चर चालू है ना वो जो शोर होवे नाना नाना टावर पास से गुजर डर जावे सुनाई को दे। एक बार तो मैं देखी अति तेज डीजे चाल रहे हो कि दुकान को सामान ही पड़ गो तो आपकी आस्था कोई का नुकसान को कारण नहीं बननी चाहिए।
2: बिल्कुल पदयात्रा करो भी जो अपने का जा रहा हो तो बिल्कुल आनंद लेना चाहे ठीक है पर ऐसा न हो कि भी आपको कोई ने परेशान करा।
3: बिल्कुल तो और खुद की सावचेती खुद की सावधानी भी रखो खुद को
2: रखो गाड़ी घोड़ा को भी ध्यान रखो चलता है फिरता।
3: और अब आपा एक डिगी पुरी का राजा को गीत सुना साहब।

0: डिगीपुरी का राजा बहुत चौके लोकगीत सुनाया
1: बिल्कुल। और आपा तो बिल्कुल डिग्गी पहुंच गया, कल्याण जी के चरणा तक ढोग लगा लिया आज गीत के माध्यम हुई। लेकिन अब आप आ रहे चालपा को टेम हो रहे साहब।
0: बिल्कुल, अब खेती बाड़ी को टेम पूरा हो चले तो अब आप दो महेश भाई ने और
1: चंचल ने आ गया
0: और करा सबने
1: राम राम, राम सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये खूबसूरत नगमा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। चमत्कार फिल्म से स्वर कुमार सानू का है, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत अनु मलिक का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: और श्रोता आकाशवाणी जयपुर अजमेर के सामीन चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर बेचारा फिल्म से स्वर कुमार सानू और अलका याग्निक का है, गीत के बोल समीर के और संगीत आनंद मिलिंद का।
1: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गई?

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोता, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त सरिता के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धड़कन फिल्म से। स्वर अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू का है गीत के बोल समीर की, और संगीत नदीम श्रवण।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से सर कुमार सानू और साधना सरगम का। वाकई दोस्तों, कहते हैं ना कि दीवाने तेरे हैं इस बात से इनकार नहीं, दीवाने तेरे हैं इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें हमें आपसे प्यार नहीं। कुछ तो कसूर आपकी निगाहों का है, कुछ तो कसूर आपकी निगाहों का है, अकेले हम तो गुनहगार नहीं। दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का श्रोताओं, ये आखिरी नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं फूल और कांटे फिल्म से स्वर अलका याग्निक और कुमार सानू का है, गीत के बोल समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोता, अभी आपने सुना फूल और कांटे फिल्म से ये खूबसूरत नगमा। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोता, इस समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शक्ति के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। शक्ति, आज किन खबरों के साथ अपने इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रखे हैं?
1: नवीन, आज डाली जाएगी नजर सबसे पहले क्रिकेट के मैदान पर, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है और श्रीलंका पे फॉल ऑन का खतरा बना हुआ है।
0: शक्ति, वहीं ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी से 210 रन से हरा दिया है। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर पहुंच चुकी है।
1: और नवीन, अगर चेस की बात कर ली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं।
0: तो आज के इस अंक में इन चारों खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा खेल जगत की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी हम आपको बताते चलेंगे। शक्ति, कोलंबो में भारत की स्थिति जो है अब आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका ने तीसरे दिन का आज खेल समाप्त होने पर पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। दिन के खेल के समापन के समय दिनेश 85 और लाहिरी कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर थे।
1: वहीं पर नवीन, श्रीलंका को अभी भी फॉल ऑन टालने के लिए 39 रन की दरकार है। हालांकि आज के खेल में सबसे बड़ी चीज उनके लिए यही रही कि पसिंदू सूर्या बंदारा ने 80 रन की शानदार पारी खेली और काफी हद तक पारी को आगे बढ़ाया। भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इस तरह से श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। आइए पहले सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
2: भारतीय गेंदबाज सोनल दिनुशा की अगुवाई में श्रीलंका के पुछलने बल्लेबाजों के संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहे। इससे बारिश और खराब रोशनी के कारण आज तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त होने तक मेजबान श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर 265 रन स्कोर बोर्ड पर लगा लिए थे। श्रीलंका ने आज 2 विकेट पर 8 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में

0: 122 रन जोड़े। बारिश के कारण देर से शुरू हुए दूसरे सत्र में मेजबान टीम ने 3 विकेट गंवाते हुए 86 रन और जोड़े। चायकाल तक 7 विकेट पर 216 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए श्रीलंका के जल्दी सिमटने के आसार दिख रहे थे। धनुषा ने हालांकि लगातार तीसरी पारी में 50 से अधिक रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने केशारा नुवांता के साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जोड़े और लाहिरू कुमारा के साथ 9वें विकेट के लिए अब तक 35 रन की अटूट साझेदारी की। धनुषा दिन का खेल समाप्त होने तक 85 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। विशाल शर्मा स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, इस मैच में एक बार फिर हम सबकी उम्मीदें जो थी वो मानव सुथार पट्टी की हुई थी लेकिन इस बार वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 21 ओवर उन्होंने फेंके हैं जिसमें उन्होंने 83 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट हासिल किए हैं लेकिन जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जब शुरू के 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे श्रीलंका के तो लग रहा था कि शायद भारतीय टीम जो है इन्हें और जल्दी समेट लेगी लेकिन पसिंधु सूर्या बनांद्रा उन्होंने 80 रन का जो योगदान दिया और साथ में इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं धनुषा 85 रन पर उन्होंने भी बेहतर योगदान देते हुए श्रीलंका को एक अच्छी स्थिति में अगर उनके हिसाब से कहें एक बेहतर स्थिति में ला दिया और भारत के हिसाब से कहें तो शायद वो उन्हें हमें फॉरल की दरकार की तरफ ले चलेंगे।
2: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नवीन, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी ने एक वक्त पे अपना अटैक कायम किया था कह सकते हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाजों से अधिक इस गेंदबाजी को किसी ने परेशान किया है तो वो है इस मैदान में बारिश ने जिसने लगातार खलल डाला और उस रिदम को तोड़ने का काम किया है। आपने मानव सुधार का जिक्र किया, अपना तीसरा मैच ये खिलाड़ी खेल रहा है आज पांचवीं पारी और 20 विकेट ले चुका है तो कह सकते हैं मोमेंटम में है। उम्मीद है कल भारतीय गेंदबाजों की मनोस्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी, जल्दी से जल्दी टीम को ऑल आउट किया जाए और फॉलो ऑन देकर के आगे भारत किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है मैच को।
1: शक्ति, भारतीय गेंदबाजी पर अगर हम एक नजर डालें तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद जो भारतीय स्पिनर हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स आप देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिले और मानव सुथार को भी 3 ही विकेट हासिल हुए हैं। इसका सीधा सीधा असर यह है कि कल कोई भी गेंदबाज अच्छा फायदा उठा सकता है क्योंकि आज बारिश रही है जिसने लगातार खेल में रुकावट पैदा की है और कल सुबह जब खेल आरंभ होगा तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी श्रीलंका को पवेलियन भेजा जाए।
2: जी बिल्कुल, इसी पे नजर होगी और किस तरीके से इस मुकाबले के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत टेस्ट में हो अफगानिस्तान के बाद एक और क्लीन स्वीप की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आए।
1: कल उम्मीद है कि पंत को मैदान में उतारा जाएगा क्योंकि आज तीसरे दिन उन्होंने विकेट कीपर नहीं की और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने ये जिम्मेदारी संभाली थी क्योंकि उनके कंधे पर जो है वो चोट लगी हुई थी और उम्मीद करते हैं कि कल जब खेल आरंभ होगा और जब तक खेल प्रेमी अपने टीवी को ऑन करेंगे या क्रिकेट कमेंट्री सुनेंगे तब तक जो है पवेलियन में जा चुकी होगी श्रीलंकाई टीम और उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट मैच को कल ही समाप्त करने की कोशिश करेगा। वही बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बेंगलुरु में क्वार्टर फाइनल में शाहबाज अहमद के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ पारी और 210 रन से जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में अब ईस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा। यह मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा और शक्ति एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उम्मीद की जाती है कि इस टूर्नामेंट के बाद ही जो है कई खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम में खासकर टेस्ट क्रिकेट में आने का अवसर मिलता है। और अगर हम बात करें अगर आईपीएल को इससे कंपेयर करें तो आज भी मुझे लगता है कि अगर मानव सुथार जैसे खिलाड़ी बिना आईपीएल में शिरकत की हुई या बिना आईपीएल में अपना जलवा दिखाए हुए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं तो ऐसी दिलीप ट्रॉफी जैसे जो हमारे घरेलू टूर्नामेंट है उसमें से भी कई खिलाड़ी निकलकर हमारी टीम में आ सकते हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, आईपीएल एक तरफ जहां पे ग्लैमर से भरपूर टी20 का रोमांच है दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी, आपने मानव सुथार का जिक्र किया, अभी इसके पहले रणजी ट्रॉफी संपन्न हुई, आकिब नवी एक स्टार के रूप में उभरे और पूरा देश पूछ रहा था तो आप ये अनुमान लगाइए कि आईपीएल में भी खिलाड़ियों को जो चुना जा रहा है उसके लिए एक पैमाना दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी बनते हुए नजर आ रही है।
1: जी और घरेलू क्रिकेट से अगर आप खिलाड़ी चुनकर लेकर आते हैं तो लगता है कि हमारे पास अभी वो खिलाड़ी बचे हुए हैं जो एक क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं ना कि सिर्फ आईपीएल का सिर्फ गेंद और जिसमें सिर्फ बॉलर बॉल ही डाल रहा है और लगातार सिर्फ उसे बाउंड्री का तरफ ही अपना रुख करना पड़ता है क्योंकि हर गेंद जो है दर्शक भी चाहते हैं कि हर गेंद बाउंड्री के पार हो लेकिन अगर आपको क्लासिक खेल देखना है तो आपको घरेलू क्रिकेट को थोड़ा और बढ़ावा देना पड़ेगा। नजर कर लेते हैं उधर दूसरे मैच में दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुशीर खान और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार अर्धशतक की बदौलत वेस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन नॉर्थ जोन ने लगातार विकेट चटकाकर तीसरे

0: मुकाबले में वापस कर लिया है अपने आप को।
1: जी बिल्कुल, और जीत के लिए 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पश्चिम क्षेत्र की टीम एक समय अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 195 रन पर थी नवीन, और आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 70 गेंदों पर 66 रन की एक पारी खेली, लेकिन वो आउट हुए और वेस्ट जोन अभी भी जीत से 67 रन दूर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि महज 3 विकेट हाथ में है।
0: जी क्रिकेट प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद रोमांच से भरपूर रहेगा, आपकी नजर दिलीप ट्रॉफी पर भी रहेगी, और कोलंबो में तो हम आपको एक ऐसा मैच देखने की हम लोग कोशिश करेंगे जहां भारत जो है जीत की ओर अग्रसर होगा। क्रिकेट के मैदान के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन स्टेडियम की ओर, जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी BWF की ताजा रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर पहुंचकर पड़ी है, और ये स्टार महिला डबल्स के 39वें स्थान पर था और अब 27वें स्थान पर आ गया। बेहतर खेल का प्रदर्शन किया त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। अगर हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा के बाद अगर हम किसी जोड़ी को देखते हैं शक्ति, तो यही एक जोड़ी नजर आती है, और इससे उम्मीदें भी करी जा रही हैं कि भविष्य में ये जोड़ी और बेहतर खेल दिखाएगी और रैंकिंग के साथ साथ अगली बार हमारे को एक पदक और ऊपर मिलने की कोशिश।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि पदक का रंग और बेहतर चमक बिखेरता हुआ नजर आएगा, और भारतीय बैडमिंटन में किसी नए ध्रुवतारे की तरह ये जोड़ी चमकते हुए नजर आ रही है। नवीन, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, आज 25 अगस्त का दिन है
0: जी,
1: और आज ही के दिन आज से 7 साल पहले पीवी सिंधु ने पहली बार BWF विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता था, तो एक महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन एक महत्वपूर्ण और उपलब्धि इस महिला डबल्स जोड़ी ने जोड़ी है।
0: अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा के बाद शक्ति ऐसा लगता था कि शायद महिला डबल्स में कोई भारतीय, जो हालांकि भारतीय जोड़ी पनप भी नहीं पा रही थी, बहुत बेहतर खेल का प्रदर्शन नहीं कर रखे थे, लेकिन जिस तरह से इस जोड़ी ने उम्मीदें जताई हैं, मेडल की उम्मीदें जताई हैं, और लगातार जिस तरह से इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, उससे लगता है कि भारतीय जोड़ी भविष्य के अंदर एक अच्छे सितारे के रूप में चमकेगी।
1: और अब बात की जाए शतरंज की, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया।
0: प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी, और इसके बाद खेले गए 3 ब्रिज गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा, और आज खिताबी मुकाबले में प्रज्ञानंदा का सामना मौजूदा चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा। और अब बात खेलो इंडिया स्कीम की। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव ने कहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हमारी व्यवस्था का हिस्सा रहा है। श्री राव ने संवाददाताओं से कहा कि हम पाठ्यक्रमों में खेल को वापस लाने का काम कर रहे हैं।
2: Integration of sports in schooling curriculum is not something new to our nation. Gradually, I think we have moved on and there has been some shift in the alignment and priorities. I will not be able to give a timeline, but I would like to get it done as early as possible. Simply because if every child in the school is able to go to the playground and play, I think that will help the country in a very transformative manner to become a good sporting nation.
1: इस अवसर पर श्री राव ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया की नई स्कीम के माध्यम से हम कई स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और जिलों के स्तर पर ज्यादा प्रतियोगिताएं और लीग शुरू करना अधिक बच्चों और खिलाड़ियों के लिए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से जोड़ने का काम करेगा।
2: In the new scheme of Khelo India, revamped scheme, we are now working on multiple layers. So one is to introduce more competitions and leagues at the level of schools, districts, universities, colleges, which will actually engage more number of children and athletes in sporting ecosystem, as well as they will get more opportunity to continue to play. Secondly, we are also thinking in terms of having Khelo India Utkrisht Vidyalay. These will be already existing schools, but they would have a very heavy focus on good quality sporting training program and we'll have Khelo India feeder schools. Feeder schools will be able to feed talented athletes and budding students into the sporting ecosystem.
0: और अब आपको लिए चलते हैं टेनिस के मैदान की ओर। न्यूयॉर्क में सीजन के आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज क्वालिफायर मुकाबलों के साथ हो चुका है, जहां कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी मेन ड्रॉ में पहुंचने के लिए क्वालिफाइंग राउंड पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और शक्ति, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। US ओपन आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है, और ये हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट होता है।

0: जी बिल्कुल, और जितना खास ये टूर्नामेंट है उतनी ही खास इसकी इनामी राशि होती है। सभी इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल 108 मिलियन अमरीकी डॉलर की इनामी राशि रखी गई है नवीन, जिसमें पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन को साढ़े पांच मिलियन डॉलर मिलेंगे। तो आज जानते हैं कि टेनिस की दुनिया के इस रोमांचक टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में इस बार कैसी टक्कर देखने को मिलेगी।
1: ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से कार्लोस अल्कराज़ और यानिक सिनर ने किसी बड़े टूर्नामेंट में एक साथ हिस्सा नहीं लिया है। मौजूदा चैंपियन अल्कराज़ ने यूएस ओपन में वापसी की पुष्टि की है, जबकि दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर टूर्नामेंट से हट गए हैं। 2008 में रोजर फेडरर के बाद से किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने सिंगल्स का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड नहीं किया है। 23 वर्षीय कार्लोस अल्कराज़ जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। अब नंबर 1 सीड अलेक्जेंडर ज़्वेरेव होंगे, जो पिछले 2 ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं और फ्रेंच ओपन में जीत हासिल कर चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन नोवाक जोकोविच भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। राफेल जोडर और लर्नर टीएन जैसे युवा खिलाड़ी अगर टूर्नामेंट में आगे तक जाते हैं तो टॉप 10 में जगह बना सकते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन के रनर अप प्लेवियो कोबोली भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स चैनल।
0: नवीन, 30 तारीख से इस महीने की मेन ड्रॉ शुरू हो जाएंगे, कितनी उम्मीदें इन खास खिलाड़ियों से होंगी? स्टार्स हमेशा फेवरेट होते हैं।
2: उम्मीद करते हैं कि हम अपने तमाम उन खिलाड़ियों को जो हमारे फेवरेट हैं, अल्कराज़ को हम खेलता हुआ देख पाएंगे, और ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और विंबल्ड, क्योंकि ये एक आखिरी लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, तो हर कोई खिलाड़ी इसको जीत के साथ इसको अपने इस सीजन के एंड को इसको करने की कोशिश करेगा। और अपने सुनने वालों को हम एक बार फिर बता दें कि विंबलडन 1877 में शुरुआत हुई थी, और यूएस ओपन जो था 1881 में, एक क्रोनोलॉजी है शक्ति, फ्रेंच ओपन 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। 30 अगस्त से इस प्रोग्राम की या कहें इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी, और हमारी नजर उस पर लगातार रहेगी। स्पोर्ट्स स्कैन में हम लगातार आपको ताजा तरीन जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल, अब वक्त हमें बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा है कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी है। श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है।
0: जी बिल्कुल, और इस जोन की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, दिलीप ट्रॉफी के नॉर्थ ईस्ट जोन पर पारी और 210 रन की जीत बनाते हुए।
2: आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन और शक्ति को जी इजाजत, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी

0: भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर

0: ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को

0: एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में झुमरू फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं किशोर कुमार।

0: मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आरती फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रोशन।

अगला गाना हमने लिया है रागिनी फिल्म से, इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत से सवारा है ओपी नैयर ने।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम किस्मत।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में गुलजार की बोल और आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम परिचय।

संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

है देश की सुरील धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे।
2: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
3: ए मुन्नी,

1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे।

0: लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगे।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं, अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज तक मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर, शोध आलेख स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म गुलामी से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से, आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गीत में बोल थे आनंद बख्शी के और धुन थी आरडी बर्मन की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म ये वादा रहा से, आवाज किशोर कुमार और आशा भोसले की।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना।

अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सागर से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म परिंदा से, आवाज आशा भोसले और सुरेश वाडकर की।

आइए अगला किताब को सुनवाते हैं फिल्म दर्द से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में। गीत में बोल है नक्श लालपुरी के और संगीत है खयाम का।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

ये ही सुनिए फिल्म लव स्टोरी से, आवाज आशा भोसले और अमित कुमार की। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के धुन आर डी बर्मन की।

रोमांस के इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हिजरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के

वाशिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने

0: हार 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं भी अब सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल प्रातः 5:51 पर आरंभ होगी। तब तक आज्ञा दीजिए रेडियो होस्ट शबाना परवीन को। शुभरात्रि, शब्बे खैर, जय हिंद।